सुप्रभात, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 15 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को है। लीजिए सुनिए हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। तीन दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे इसकी भाग संख्या 27।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानी तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह की 6:15 हो चुके हैं।

सुविचार। हर दिन की शुरुआत कुछ प्रार्थना से की जाए। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ज्ञान के मार्ग पर चल सकूं, दूसरों की भलाई कर सकूं और हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रह सकूं। मेरे मन में अच्छे विचार और हृदय में सभी के लिए प्रेम हो। हर सुबह प्रार्थना के बोल अवश्य बोले जाने चाहिए, क्योंकि ये हमें दिन भर के लिए ऊर्जा से भर देते हैं। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

पुरुषोत्तम उपाध्याय और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ों में कार्यक्रम की पहली रचना आपने सुनी। कहते हैं कि मन उस परम शक्ति का सगुण निराकार स्वरूप है, बस हमें उस स्वरूप को पहचानने की जरूरत है।

हमारे मन में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली है, और ये जो ऊर्जा है ये हमारे विचारों के द्वारा ही संप्रेषित होती है। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। आइए इसमें सुनते हैं अब शंकर महादेवन की गाई हुई ये भक्ति रचना।

0: मन प्रबल है तो विपरीत परिस्थितियों में भी विजय है, और अगर मन दुर्बल है तो अनुकूल परिस्थितियों में भी पराजय की स्थिति बन जाती है। इसलिए मन की दुर्बलता को दूर करने का एकमात्र साधन उपासना है।
1: चलो सखी कुंज गोपाल जहां।
0: सुनिए कार्यक्रम की अंतिम रचना जगजीत सिंह की आवाज में।

इस रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गीत हमने लिया है उस्ताद फिल्म से। गीत को आवाज दी है आशा भोसले ने। जानिसार अख्तर के बोल, तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का, और फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

शमशाद बेगम की आवाज़ में गीत आप सुन रहे थे कैदी फिल्म से। जानिसार अख्तर के बोलों को धुन दी ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का इस अंक का यह आखिरी गीत प्यासा फिल्म से गीता दत्त की आवाज़। गीतकार साहिर, संगीतकार एसडी बर्मन।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 7 बजने को है। कुछ बातें कुछ गीत प्रस्तुत है ये अगला कार्यक्रम।

नई सुबह, नया सूरज, नई किरण, नया दिन। वहीं अगर बारिशें आती है तो पहली बारिश, उसकी पहली बूंद नई नई सी लगती है। ऐसा क्यों है कि सब कुछ वही होने के बावजूद भी हर बार एक समय के बाद वो नया लगने लगता है। रोज वही सूरज उग रहा है, रोज वही सुबह हो रही है, रोज उसी खिड़की को खोलकर हम उसी किरण की तपिश महसूस कर रहे हैं, फिर भी वो नएपन का एहसास क्यों होता है? क्या हो अगर ये नएपन का एहसास हमारी जिंदगी से गायब हो जाए? हाँ, है ना, बड़ा अजीब सा सवाल है, उलझन में डाल देता है, लेकिन इसका जवाब हमें बताता है कि क्यों सब कुछ नया होना जरूरी है, क्यों एक बार फिर से शुरुआत करना जरूरी है, क्यों एक बार फिर से अपने आप को ताजगी से भर देना जरूरी है। और क्यों एक बार फिर से दुनिया की इस भागदौड़ में खुद को साबित कर देना जरूरी है। जी हाँ, तो ये सोमवार बिल्कुल हर सोमवार की तरह आया है, लेकिन कुछ नया जरूर लाया है। हो सकता है वही बातें हों, वही मुलाकातें हों, लेकिन वही लोग हों, फिर भी कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, बस ढूंढने भर की देरी है। तो चलिए इस नएपन के साथ एक बार आपको फिर से जगा देते हैं। अलसाई हुई आंखों को विदा कीजिए और देखिए कि सामने क्या नया आपका इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी जोधपुर, आपके कानों से होता हुआ आपके दिलों में गूंजता हुआ। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत शैला के साथ।

नया क्यों जरूरी है? पुराना भुला देने के लिए? जी हाँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो बस उसके लिए हर पल कुछ नए का इंतजार करें।

वैसे प्रेम की ये तो खास बात है ही, सब कुछ वैसा होते हुए भी नया सा लगने लगता है। आपने महसूस नहीं किया तो फिर जरूर करके देखिए। प्रेम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आसपास कहीं है, बस वो नजरिया आपको

क्या रिश्ते भी नए और पुराने होते हैं? लोग तो वही होते हैं, फिर रिश्तों में ये नयापन या पुरानापन कैसे आ जाता है? कई बार हम किसी को इस तरह से किसी से मिलवाते हैं कि ये हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, या फिर कुछ ऐसे कि भाई इनसे बस ये नया नया रिश्ता ही जुड़ा है। लेकिन आपका मन क्या कहता है कि जब रिश्ते पुराने होने लगते हैं, लोग पुराने होने लगते हैं, उनके साथ हमारा जो समय है बहुत ज़्यादा बीतने लगता है, तो क्या उनमें एक मजबूती आती है या फिर हम उन्हें यूं ही जाने देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए रोज़ उसी तरह हमारे आसपास हैं? क्या पुराने होते हुए रिश्ते और गहरा जाते हैं या फिर कई बार अपनी जड़ों से उखड़ने लगते हैं? कहते हैं कि हम जिनके साथ अक्सर अपना वक्त गुजारा करते हैं, धीरे धीरे उनकी कदर हमारे लिए कम हो जाती है। क्या कहता है आपका मन? आपके आसपास जो वो शख्स हैं, जो वो रिश्ते हैं, जो वो बंधन हैं, जो वो प्यार है, वो समय के साथ और मीठा हो रहा है या फिर कई बार लगता है कि कुछ कड़वाहट कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रही है? कई बार ऐसा लगता है कि वो खुशबुएं जो महका करती थी अब वो हल्की होती जा रही हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि जो रंग चमका करते थे एक दूसरे के साथ आपस में बैठकर बतियाकर, अब वो तस्वीरें धुंधली होती जा रही हैं। अगर लगता है कि सब कुछ वही है और मिठास बढ़ गई है, तो इससे बेहतर और इससे खूबसूरत वाकई में कुछ नहीं हो सकता।

लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर दिल ये कहता है कि नहीं, कुछ तो है जो कम होता चला जा रहा है और एक बार फिर से उसे सोचने की जरूरत है। एक बार फिर से इस रिश्ते को बचाने की जरूरत है, एक बार फिर से जाते हुए इस शख्स को आवाज देकर बुलाने की जरूरत है। कई बार हम खुद इसमें आड़े आ जाते हैं, अपना ही अच्छा करने में हम अपने आप को ही नहीं दे पाते हैं। क्या मांगते हैं रिश्ते, चाहे नए हो या पुराने हो, बस हम में से अपना कुछ मांगते हैं, थोड़ा सा कुछ जो मैं है, जो खुद है, वो उस रिश्ते में लगा दीजिए। अपने आप को उससे अलग मत मानिए। फिर देखिए, चाहे आज का हो, कल का हो या परसों का हो, जो ये रिश्ता है वो उसी तरह सुंदर बना रहेगा। कहीं हल्का होने लगा तो फिर से हमारा जो मैं है उसे जोड़ लेगा। बने रहिएगा, कुछ बातें कुछ गीत।

क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि जिंदगी में, रिश्तों में नयापन होना चाहिए? तो फिर ये इतना विपरीत क्यों लगता है कि जहाँ पुरानी और गहरी बातों की पकड़ जमी हुई होती है, तो वहीं नया कई बार उखड़ता हुआ सा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी बात ये भी जानने सुनने समझने में आती है कि भाई नयापन ज़रूरी है, नए रंग ज़रूरी हैं, नए एहसास ज़रूरी हैं। ऐसा इसलिए भी है कि ब्लैक एंड वाइट जितना ज़रूरी है, रंगों का इंद्रधनुष होना भी उतना ही खास है। आखिर जिंदगी भी तो उस गाड़ी की तरह है जिसके पहिए चलते चलते जब घिसने लगते हैं, पुराने होने लगते हैं, तकलीफ देने लगते हैं, तो उन्हें बदलने की जरूरत हो जाती है। लेकिन कभी कौन सा पहिया तो कभी कौन सा, याद रखिएगा, ये जो बदलाव है ये अकेले नहीं हो सकता है। पुरानी नींवों पर कुछ नए खंबे खड़े किए जा सकते हैं और उसके बाद जो दृश्य बनता है, उसके बाद जो इमारत खड़ी होती है, वो बेजोड़ होती है। तो इसलिए बात यहीं पर आके फिर से घूम जाती है कि जितना नया अच्छा है उतना ही पुराना दमदार है। तो इस बात को याद रखना है कि किसी दिन की नई शुरुआत के साथ कल की हुई जो बातें हैं, कल के बीते जो किस्से हैं, उन्हें याद रखना है, भूल भी जाना है, लेकिन उनसे सबक लेनी है। अगर वो हमें परेशान कर रहे हैं, जहन में बार बार आकर कुछ कड़वाहट घोल रहे हैं, तो उन्हें भूल कर आगे बढ़ जाना है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसे पल हैं जो हमें कुछ नया करने की मजबूती देते हैं, अपने आप पे एक बार फिर से विश्वास करने की ताकत देते हैं। तो उन्हें भूलना नहीं, बल्कि उन्हें सहेज के अपने यादों की अलमारी में रख देना है कि जब भी पुराने पन्ने पलट के देखें, जब भी सुकून के कुछ पल हों और हम याद करें उन बातों को, उन किस्सों को, उन पलों को, उन क्षणों को, तो अपने आप पर एक बार फिर से फक्र होने लगे, सोई हुई उम्मीदें फिर से जागने लगे और दिल दिमाग से ये कहने लगे कि हाँ, अगर तुम साथ दो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद देखने वाले कहें कि ये क्या हुआ।

जिंदगी में बदलाव ज़रूरी है। कई चीज़ों को बदलना हमारी ज़रूरत बन जाता है। जैसे कि आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो बदल

सकती हैं, बदली जा सकती हैं, जो बदलाव मांग रही हैं। जैसे कि गुलदान में रखे फूल को, दराज पे जमी धूल को बदलने की जरूरत है। किसी पुराने शर्ट की जेब में रखे रुमाल को, दिमाग में हर दिन परेशान करते किसी ख्याल को बदलने की जरूरत है। हमें परेशान करते किसी इंसान को, और जिंदगी में बिन बुलाए आए मेहमान को वाकई बदलने की जरूरत है। लेकिन इन्हें बदलेगा कौन भाई? उसके लिए तो हमें ही कदम उठाने होंगे। पुराना अच्छा है, लेकिन अगर वो परेशान करता है, दुखी करता है, गम देता है, मायूस करता है, तो उसे छोड़ना जरूरी हो जाता है। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी कुछ नया देख पाएंगे, तभी कुछ नया महसूस कर पाएंगे। पुराने जालों में फंसकर अपने आप को और नहीं उलझाना है। देखिए, हर एक नई सोच, हर एक नई दिशा कहीं ना कहीं से हमें आवाज लगाती है। जरूरत है तो उसे सुनने की, जरूरत है तो अपनी आंखों में वो रोशनी भर देने की जो उस नएपन का एहसास कर सके। जरूरत है उसे एक नई धुन की जो फिर से कानों को कुछ नया सुना सके। तो जिंदगी का हर पल हर क्षण यही कहता है कि जहां जो जरूरी है वो किया जाए।

हर पल में, हर क्षण में, हर दिन में खुद को बस यही याद दिलाने की जरूरत है, कर चलना शुरू। तो और बस उसके बाद वही होगा जो हम करना चाहते हैं। तो जिंदगी की राहों में बस खुद को खुद की याद दिलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। छोड़े जा रही हूँ इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं नगमों के साथ। उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत सुंदर होगा, आने वाला हर पल खुशनुमा होगा। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, दीजिए इजाजत शैला को, आपका दिन शुभ हो।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे।

0: जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जीवन

0: स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
1: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रूपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रूपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई।

0: दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिन्दुस्तान लिखता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway.

0: नमस्ते सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और मैं हूँ आज की आपकी होस्ट मनीषा और मेरे साथ हैं
1: मैं हूँ सूफिया खान। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आपका आप ही के अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
0: दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। इसके साथ ही

0: रखेंगे आपको अपडेट, लेकिन उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है।
1: तो श्रोताओं, एचपीडी पर हैं चंद्राराम पटेल और फारूक अहमद शेख।
0: एफएम ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं सीएल सोनी।
1: कंट्रोल रूम से प्रवीण कुमार।
0: कंसोल पर हमारे साथ हैं शैला महेश्वरी।
1: और एफएम चैनल पर है श्रोताओं कविता सांखला। नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरू ने। और इन सभी के साथ मैं सूफिया खान।
0: और दोस्तों, मैं आपकी होस्ट मनीषा। और दोस्तों, कहते हैं ना कि बोलने से कठिन होता है सुनना, और सुनने से कठिन होता है सहना, क्योंकि हर शब्द मन को छू जाता है, लेकिन सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। जो ये कला सीख लेता है वही जीवन में सच्ची शांति पा लेता है।

जी दोस्तों, बिल्कुल ये गीत एक संदेश देता है कि चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए जीवन में, लेकिन हमें अपनी अपने काम पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होना चाहिए और हमें उसी पर निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और इसी से संबंधित मुझे एक कहानी याद आ रही है दोस्तों। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गाँव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन कई वर्षों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। तो गांव के लोग, स्वाभाविक है, उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन इससे फ़ायदा क्या, तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन मोहन बहुत समझदार था, उसने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन खेत में काम करता और नई नई बातें सीखता और अपनी गलतियों को सुधारता। फिर दोस्तों, ऐसा हुआ कि एक साल भयंकर सूखा पड़ गया, कई किसानों ने अपनी खेती ही छोड़ दी, लेकिन मोहन ने क्या किया, जरूर बताएंगे आपको, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: अच्छे दोस्त, हम आपको कहानी बता रहे थे, मेहनत थी मोहन की। हुआ ये था कि भयंकर सूखा पड़ गया था, तो कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी। लेकिन मोहन ने अपने खेत में पानी बचाने के नए नए तरीके अपनाए। उसने अपनी मेहनत को जारी रखा और अगले वर्ष अच्छी बारिश हुई। तो जो लोग अपनी खेती छोड़ चुके थे, उनके लिए तो एक सबक ही था कि मोहन ने हार नहीं मानी थी और मोहन का खेत हरी भरी फसलों से लहलहा उठा। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, एक युवक ने मोहन से पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तो मोहन ने मुस्कुराकर बोला, मैंने कभी केवल किस्मत पर भरोसा नहीं किया, मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। जब लोग हार मान रहे थे, तब भी मैं सीखता और प्रयास करता रहा। और फिर लोगों को, गांव वालों को समझ आ गया कि सफलता अचानक नहीं मिलती दोस्तों, बल्कि लगातार मेहनत, धैर्य और विश्वास से मिलती है।
1: बिल्कुल, इस कहानी से ये सीख मिलती है श्रोताओं कि मेहनत और धैर्य का जो फल है वो देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी प्रयास करना नहीं छोड़ते, वो होते हैं अंत में सफल।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: बिल्कुल श्रोताओं, इस गाने के पहले हमने बात की थी कठिन परिश्रम पर। बिल्कुल, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता श्रोताओं, क्योंकि सफलता का रास्ता जो है वो इसी से होकर जाता है। अगर कुछ पाना है हमें तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कठिन परिश्रम करेंगे तो सफलता जो है वो जल्दी मिलेगी। इसीलिए कल को अगर आसान बनाना है तो आज के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

ये दोस्तों, मंजिल पाने के क्रम में या मंजिल की ओर बढ़ने के क्रम में इंसान को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कितनी गलती कर रहा है या वो कितना धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो उन सभी लोगों से बहुत आगे है जो कि कोशिश ही नहीं करते। और दोस्तों, ये देखा भी गया है कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और बस आगे बढ़ते रहिए।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देशभर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से

0: जाएगा। हॉर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, इनोवेटर, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद हैं। जयपुर में कल कृषि और सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी की जांच के आधार पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही उर्वरकों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए, ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत का सटीक पता चल सके। बैठक के दौरान उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में खाद की निर्बाध आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों को गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 700 सीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केन्द्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इन सी मार्ट को अच्छी व्यापारिक संभावनाओं वाले स्थानों पर खोला जाएगा, ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सके। बैठक में महिला उद्यमों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी, सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसी श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और

0: इसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मॉनसून सीजन को देखते हुए जयपुर में जलभराव रोकने और नालों की सफाई के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और बारिश का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और टोंक सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ से पेड़ गिरने के समाचार हैं। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता से।
1: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा 44 मिलीमीटर जयपुर के चौमू में दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फलौदी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज रूम से मैं जयकिशन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: हनुमानगढ़ में आज सुबह तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। जिले में हुई बारिश से किसान नरमा, कपास और धान की फसल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाली जिले में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कम प्रीमियम वाली छोटी बीमा योजनाएं शुरू कर आमजन को बड़ी राहत दी है।
2: गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए, जो 12 रुपए की भी है, 424 रुपए की भी है, इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला कर करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज एक नंबर पे है इस मामले में खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने, और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, और यही नहीं पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: दोस्तों, न्यूज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, मैं हूं आपकी आज की होस्ट मनीषा और मेरे साथ में है
1: मैं हूं सूफिया खान। श्रोताओं, कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा लेकिन इस गीत के बाद।

0: जी दोस्तों, इस गीत के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इतिहास में क्या दर्ज है। दोस्तों, 2005 में आज ही के दिन जमैका के आसफा पावल ने एथेंस में 8.77 सेकंड का समय लेकर 100 मीटर फराटा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। 2008 में आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी थी।
1: और इसी के साथ बढ़ते हैं खेल खबरों की ओर। तो श्रोताओं, तीरंदाजी विश्व कप की बात करें तो भारत के धीरज बोमा देवरा और कुमकुम मोहोद ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रविवार को यानी कल तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर मिश्रित टीम का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ बात करें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की। तो महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान की टीम को 64 रन से करारी शिकस्त दी। स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में

10 रन देकर 5 विकेट ले लिए हैं और ये जो जीत है वो बेहद ही शानदार रही। और इसी के साथ अब भारतीय टीम जो है वो 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगी।

दोस्तों, बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान और मेहनत से परिवार और समाज को मजबूत बनाया है। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमें सही दिशा मिली है और इसीलिए उनकी सेवा करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। दोस्तों, बुजुर्गों की सेवा केवल उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं बल्कि उनका सम्मान करना भी होता है। उनकी भावनाओं को समझना, उन्हें प्रेम देना भी होता है। बढ़ती उम्र के साथ उन्हें सहारे, देखभाल और अपनत्व की आवश्यकता होती है और यदि हम उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें तो वे स्वयं को सम्मानित और खुश महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, देखा गया है कि आज के समाज में कई बार वृद्धजनों के साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं। उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाई जाती है। उनकी धन या संपत्ति या पेंशन का अनुचित प्रयोग किया जाता है। उनकी भोजन, दवा या चिकित्सा की देखभाल में उनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है और कई बार उन्हें परिवार और समाज से अलग थलग भी कर दिया जाता है। तो ये जो समस्या दिखाई देती है, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

0: आज के दिन यानी कि 15 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव और शोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना। बढ़ती उम्र के साथ में कई वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना समाज की जिम्मेदारी हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के दिन विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके इतिहास की अगर बात करें तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल का समर्थन किया और इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी और तभी से दुनिया के अनेक देशों में ये दिवस मनाया जाता है।
1: और इस दिवस के महत्व पर और ध्यान दें तो श्रोताओं, बुजुर्गों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, परिवारों को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रेरित करना और जो वृद्ध दुर्व्यवहार है उन घटनाओं को कम करना भी शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाना भी दिवस विशेष को खास बनाता है। और हम क्या कर सकते हैं इस दिन, तो श्रोताओं बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं, उनकी बात जो है वो ध्यान से सुन सकते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें परिवार और समाज की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। उनके साथ धैर्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। यदि किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उनकी सहायता भी जरूर करें।
0: जी दोस्तों, देखा गया है कि आज के व्यस्त जीवन में कई बार लोग बुजुर्गों की उपेक्षा कर देते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने बचपन में हमारी देखभाल की, उसी प्रकार वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बुजुर्गों की सेवा से परिवार में प्रेम, संस्कार और आपसी सम्मान की भावना बढ़ती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदैव अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उन्हें अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग बनाइए। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारी संस्कृति और मानवता की पहचान भी है दोस्तों। इसीलिए आपसे यही निवेदन रहेगा कि हमें एक ही दिन नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर हमें अपने बुजुर्गों की पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनकी तरफ पूरी जागरूक रहना चाहिए और उनका स्वास्थ्य पर, उनके देखभाल पर हमें अपना ध्यान देना चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो कि वे समाज से अलग थलग हैं।

जी दोस्तों, अभी अभी हमने आपसे बात की विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के बारे में। और दोस्तों, इसी तरह हमारे सरकार के द्वारा भी वृद्धजनों के लिए उनको ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चलाई जाती है समय समय पर। और इसी तरह की एक योजना हम आपके लिए लाए हैं आज की काम की बात में। दोस्तों, सरकार के द्वारा राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चलाई जाती है। और इसमें सरकार के द्वारा देवस्थान विभाग के माध्यम से संचालित वरिष्ठ नागरिक ये जो तीर्थ यात्रा योजना है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को

0: निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान किया जाए। इस योजना के अंतर्गत चयनित वरिष्ठ नागरिकों को भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में और कुछ विशेष तीर्थों की यात्रा भी सरकार के खर्चे पर कराई जाती है। 200 वरिष्ठ नागरिकों को ये जो निःशुल्क यात्रा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी इसका एक उद्देश्य है। आर्थिक रूप से जो कमजोर बुजुर्ग हैं उन्हें तीर्थ दर्शन का अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसकी पात्रता की बात करें तो दोस्तों आवेदक जो है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये इस योजना की पहली शर्त है। और इसकी जो आयु रखी गई है वो सामान्यतः 60 वर्ष या उससे ऊपर अधिक रखी गई है। इसके साथ ही निर्धारित शर्तों और दस्तावेजों का पूरा होना आवश्यक है। और इस ये जो यात्रा करवाई जाती है सरकार के द्वारा, इसके अंतर्गत विशेष रेलगाड़ियों से और हवाई मार्गों से भी यात्रा कराई जाती है। और हाल ही के वर्षों में लगभग 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल के द्वारा और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, इसमें जो मुख्य तीर्थ स्थल रखे गए हैं उनमें वैष्णो देवी, अमृतसर गोल्डन टेम्पल, रामेश्वरम
1: और द्वारकाधीश टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, प्रयागराज कामाख्या टेम्पल और पाशुपतिनाथ टेम्पल जो हैं उनसे विशेष हवाई यात्रा प्रस्तावित है। और आवेदन प्रक्रिया की बात करें श्रोताओं, तो देवस्थान विभाग की वेबसाइट या ई मित्र के माध्यम से ये आवेदन किए जाते हैं। और इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं वो अपलोड करने होते हैं और फिर चयन प्रक्रिया की जाती है और चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाती है। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर जो है वो चाहिए होते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपको आवास व्यवस्था और निशुल्क यात्रा की सुविधाएं सम्मिलित हैं।
0: जी दोस्तों, वृद्धजनों की ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये भी एक सरकार की अच्छी पहल है और इससे हमें पूर्ण रूप से फायदा उठाना चाहिए। कम या बहुत ही कहते हैं कि कम खर्चे पर इसमें या कहें कि ना के बराबर खर्चे में आप अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवा सकते हैं, इससे अच्छा सुनहरा अवसर क्या होगा। और ये जो यात्रा है ये साल में एक बार तो होती है, कभी कभी ये दो बार भी करवा दी जाती हैं, तो आप ध्यान रखिए और ई मित्र पर जाकर आप अपडेट रहिए। पेपर में भी इसकी सूचना आती है, समाचार पत्रों में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप अपने वृद्धजनों को, अपने घर के अपने माता पिता को आप आराम से निःशुल्क यात्रा करवा सकते हैं तीर्थों की। तो ये काम की बात आपके लिए उपयोगी रही होगी, हम ऐसी आशा करते हैं।

0: श्रोताओं, आज 15 जून है और हर साल जो है 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि पवन ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता जो है उसको बढ़ाना। पहला पवन दिवस जो है वो 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। साल 2009 में इसी EWEA और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सहयोग से ये एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया और इसके बाद से ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाने लगा। श्रोताओं, पवन ऊर्जा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके इस्तेमाल से कोई भी हानिकारक गैसें नहीं निकलती और ये जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करती है। ये ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और किफायती माध्यम बनता जा रहा है जिससे रोजगार का भी सृजन होता है और स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में भारत की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।
1: दुनिया दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रही है और हम बिजली बनाने के लिए सालों से कोयले और डीजल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिसने हमारी धरती की हवा को जहरीला बना दिया है। ऐसे में पवन ऊर्जा हमारे सामने वरदान बनकर आई है और आज दुनिया भर में विंड टर्बाइंस लगाए जा रहे हैं और भारत भी इसी दौड़ में पीछे नहीं है। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में फैले विशाल विंड फार्म इस बात का सबूत हैं कि हम एक स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

0: श्रोताओं, रात के समय जब खुले आसमान को देखते हैं तो दिखते हैं बहुत सारे तारे, और उन्हीं तारों के बीच दिखती है सफ़ेद धुएं जैसी एक चमकती हुई मेखला के समान, जिसे हम कहते हैं आकाशगंगा। बिल्कुल, आज विज्ञान विश्व हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारी आकाशगंगा के बारे में। और श्रोताओं, इसी को मिल्की वे भी कहा जाता है। ये सिर्फ तारों का झुंड नहीं होता, बल्कि ये हमारा वो ब्रह्मांड ये पता है जिसके एक छोटे से कोने में हमारी नन्ही सी पृथ्वी चक्कर काट रही है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में ही नहीं है, बल्कि इसके बाहरी किनारों पर मौजूद ओरियन आर्म नाम के एक सर्पित भुजा में स्थित है। और इस विशालकाय आकाशगंगाओं की तरह इसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सजिटेरियस ए भी कहा जाता है।
1: जी दोस्तों, हमारा पूरा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और सूर्य को इस केंद्र का एक चक्कर पूरा करने

में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आकाशगंगा की सबसे करीब बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है और इस आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी कि इसका मतलब है कि प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख वर्ष का टाइम लगता है। खैर, हम इसकी बात यहीं तक सीमित रखेंगे, आपको ले चलेंगे गीतों की दुनिया में, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात जयंती विशेष की, तो आज भारतीय थल सेना के पहले थल सेना अध्यक्ष और फील्ड मार्शल KM करियप्पा के बाद द्वितीय भारतीय थे ये। बात कर रहे हैं हम राजेंद्र सिंह जी जडेजा की, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और भारतीय थल सेना प्रमुख बने। आज ही के दिन 15 जून 1899 को जन्मे राजेंद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल के दौरान विश्व युद्ध में विदेशों में

0: में राजेंद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल के दौरान विश्व युद्ध में विदेशों में जाकर शांति मोर्चा भी संभाला था।
1: दोस्तों, आज जयंती है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार 1917 में जन्मे सज्जाद हुसैन साहब की, जिन्होंने वीणा, वायलिन, बांसुरी, पियानो सभी में किशोरावस्था में ही माहिर हासिल कर ली थी। दोस्तों, 1937 में उन्होंने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने जिन फिल्मों में संगीत दिया उनमें से सैयां, संगदिल, दोस्त, रूपलेखा, रुस्तम, सोहराब जैसी फिल्में हैं जिनमें उनके संगीत में फिल्मी सफर को बहुत सराहा गया, और आखिरी सज्जाद जिसमें उन्होंने संगीतकार के रूप में एक उनकी अंतिम फिल्म थी करियर की, जिसमें उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी।
0: और श्रोताओं, आज जन्मदिन मना रही है भारतीय टेबल टेनिस के बेहतरीन सितारों में से एक और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मनिका बत्रा। आज उनका जन्मदिन है। 15 जून 1995 को जन्मी मनिका बत्रा ने, श्रोताओं, रियो 2016 में अपना ओलंपिक डेब्यू करने से पहले 2016 के ही दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।

0: और आज श्रोताओं हम याद कर रहे हैं उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर जी को। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायकों में से एक थे ये और ध्रुपद गायन परंपरा के प्रमुख कलाकार थे। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन गायन शैलियों में से एक मानी जाती है श्रोताओं, और वो प्रसिद्ध डागर घराने से संबंधित थे जिन्होंने ध्रुपद संगीत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी दोस्तों, इसके साथ ही आज जयंती है सुरैया जी की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं और गायिका भी रहीं। दोस्तों, उस समय में वे अपनी फिल्मों के गीत स्वयं गाती थी जो कि उनकी विशेष पहचान थी। उन्होंने अपने अभिनय से लाखों दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया था। आज ही के दिन 15 जून को लाहौर में जन्मी सुरैया जी ने अपनी जो सफल फिल्में दी उनमें जो प्रमुख फिल्में हैं वे हैं अनमोल घड़ी, दिल लगी, मिर्जा गालिब, शायर और अफसर। भारतीय सिनेमा की पहली बड़ी सिंगिंग स्टार के रूप में जाने जाने वाली सुरैया जी ने अपने अभिनय और गायन से एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और फिल्म जगत में, हिंदी फिल्म जगत में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आइए सुनवाते हैं उन्हीं की पिक्चर से ये गीत।

श्रोता अभी सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के इस अंक की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक रचना के साथ जिसे गाया है चित्राराम और साथियों ने।

उगमराज और साथियों द्वारा गाई हुई ये लोक रचना भी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

श्यामलाल द्वारा गाई हुई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस ठुमरी से, जिसे गाया है बड़े गुलाम अली खान ने।

शोभा जोशी को अभी आप सुन रहे थे। सुगम संगीत में आइए अगली रचना सुनते हैं, जिसे गाया है पंडित अजय पुहानकर ने।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे जंजीर फिल्म से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, बोल गुलशन बावरा के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में यादों की बारात फिल्म से ये गीत। बोल है मजरू के और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

लीजिए अब अगला गीत सुनिए, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आ गले लग जा, बोल हैं शाहिर लुधियानवी के और संगीत है आर डी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे अभिमान फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, और संगीत था एस डी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में अनामिका फिल्म का ये गीत। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत था आरडी बर्मन का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, बोल थे आनंद बख्शी के, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अभी अगला गीत सुनते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की, बोल है वर्मा मलिक के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब अगला गीत सुनते हैं चोर मचाए शोर फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, बोल है रविंद्र जैन के और संगीत भी है रविंद्र जैन का।

लीजिए, अब सुनिए। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपकी कसम फिल्म का ये गीत बोल है आनंद बख्शी के।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में आज आप सुनेंगे गौरी देवी राव द्वारा गाई लोक रचनाएं।

di un dolore, morare, mandare, are, ne lurare, are, mo, je, mondoli.

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आज के लोक संगीत में आप सुन रहे हैं गौरी देवी राव द्वारा गाई लोक रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में लीजिए सबसे पहले सुनिए आतिफ असलम को।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सोमवार से खुल जाएगा। विश्वभर से प्रमुख नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और इसे पश्चिमी एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सुश्री सीतारमण ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर में शुरू होगी। प्रदेश में नहरों के जीर्णोद्धार और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जायका प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए के 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन कार्यों में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की सिद्धमुख नोहर और भाखड़ा नहर प्रणाली की मरम्मत और रीलाइनिंग के काम किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने से नहरों की जल वहन क्षमता में सुधार होगा और किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी तेजी से पहुंच सकेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इन स्वीकृत कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा झालावाड़ के खानपुर इलाके में दर्ज हुई। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़, झालावाड़ के पचपहाड़, छीपा बड़ोद, चौमू, मांगरोल, छबड़ा और बसवा में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कल जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। राज्य में कई स्थानों पर अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सर्वाधिक तापमान फलौदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिलानी में 41.2 और बाड़मेर में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। प्रदेश भर में आज सोमवती अमावस्या श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी और तिलस्वा महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीप दान कर समृद्धि की कामना कर रही है। वहीं बाड़मेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने का सिलसिला दिन भर से जारी है। तीर्थराज पुष्कर में आज पवित्र स्नान

0: के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां सरोवर में स्नान करते समय गहरे पानी में गए एक युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। अजमेर जिले के जसनगर क्षेत्र में लूणी नदी के रपट पर एक बस और कार की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और छह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार एक ही परिवार के सदस्य सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चौथ का बरवाड़ा के पास मिर्ची से भरे एक ट्रक के त्रिलोकपुरा अंडरपास में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भरतपुर के बयाना स्थित दरबारहना झरने के नीचे पिकनिक मना रहा एक युवक गहरे पानी में चला गया जिससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

वो टाइम चल रही है, अब देखो बरसात रो, किसान भाई की कोशिश आज रहा है कि भाई टाइम आते जो भी आप रहे काम काज करे तो बढ़िया रहे। क्या भी है बड़ा लोग बेड़ारा बायोडा जी का मोती है वे आप रहे निपज है। हम जो बात करा के मानसून की शुरुआतों पहले ही जो आप बात करा सफेद लटरो जी को प्रकोप है वो भी अपने खेतर महीने रिया करे। किसान भैया आज आपने जानकारी दी रहा के भाई बरसात पहले जहाँ सफेद लटरो जी को समेकित प्रबंधन है वो आप किन तरह से कर सका। सफेद लटरा जी का परपोसी जी का वे वृक्षोर चुनाव आड़ पाड़े वृक्षोर समूर महीने आप करे। जी आप बात करा के भाई नीमड़ो है, बोड़ी है, खेलड़ी है, अमरूद है, गुलर है, ए है। और जटे परंगारा जी का परपोसी वृक्षों सु रात्र महीने पकड़ने जी की सुविधा वे वन ठोड़ माते भ्रंग अपा एकत्रित करना और 5% जी को केरोसिन है वो मिला परा पानी रे महीने और उन अपा छिड़काव करा तो अपा नष्ट अपा कर सका। भ्रंग प्रकाश रे प्रति आकर्षित हुआ करे, इना ने प्रकाश पास माते आकर्षित कर परा भेड़ा करना और मिट्टी रे तेल रे महीने पानी डाल परान भी अपा नष्ट कर लिया करा। इंडे साथे साथे परपोशी वृक्ष जी के है वन आपा चिन्हित कर ला भाई इन इन रूकड़ा माते जी का बैठिया करे वटे आपा फेरोमोन सामरे टाइम रे मैंने लगा दा। भ्रंग 15-20 मीटर री दूरी फेरोमोन री तरह आकर्षित हो जाया करे और प्रति हेक्टर 3-4 परपोशी वृक्ष माते फेरोमोन लगाना चाहिए और उन माते कीटनाशी रसायन और जी को छिड़काव है वो आपने करना चाहिए। मानसून री शुरुआत रे साथ ही भ्रंग खेतर महीने और खेतर जी का आड़ पाड़ जी का अपने रूकड़ा है जो खेल री बात करिए अपा बोड़ी है, नीम है, अमरूद है, आम है, इन रूकड़ा माते आप रे भेड़ा हो जा। इन रूकड़ा माते मानसून री शुरुआत पहले ही जापा कई करा के दिन रे टाइम रे महीने इमिडा क्लोप्रीड 17.8 SL रो 1.5 मिली या क्यूनोल्फास 25% EC रो 2 मिली% पानी रे महीने मिलाना पने छिड़काव करना चाहिए। हम बात आवे कि भाई आज की सफेद लट है लटरी अवस्था रे महीने आप बात करा कि नियंत्रण आप की कर राख सका। खरीफ रे महीने जीव आप बात करा भात भातरी जीव अपने फसला वे कुछ सिंचित फसला वे कुछ असिंचित फसला भी होया करे तो बुएरे अनुसार अपा समय अनुसार लटरे नियंत्रण वास्ते आपा नेरा नेरा आपा उपाय कर सका। क्या जीव में आप बात करा कि भाई जिकी भी फसला आपा बोवा उन महीने लटरे नियंत्रण वास्ते एक तो आपने हेंगो पहला कई करना चाहिए कि भाई जीव आपा मूंगफली री मान लो बुआई करा मान लो तो मूंगफली री फसल महीने सफेद लटरी रोकथाम रे वास्ते किसान भाई कई कर सके के इमिडा क्लोप्रीड ने 600 FS 6.5 ml प्रति किलोग्राम बीज री दर सु आपरे बीजो उपचार करनी ज मूंगफली री बुआई आपने किसान भाई ने करनी चाहिए। उपचारित बीज ने 2 घंटा छाया रे महीने बढ़िया हुकाला और बाद में आपा बुआई करा। हम जो आपने बाजरो भी किसान भाई खरीफ रे महीने आपरे बढ़िया भावे आपरे खेतर महीने बाजरा रे 1 किलो बीज रे महीने 3 किलोग्राम कार्बोफ्यूरोन 3% या क्यूनोल्फास 5% कण मिला परार बढ़िया आपा बुआई अपने करनी चाहिए। भूमि उपचार करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि सफेद लट प्रभावित जी का क्षेत्र मैंने क्यूनोल्फास 5% कण 30 किलो या कार्बोफ्यूरोन 3% कण 25 किलो प्रति हेक्टर बुआई पहला आपरे हलू बढ़िया किसान भाई कतारा रामायण आपरे उड़ देना चाहिए और बाद मैंने इणिज कतारा रामायण पाची बुआई करनी चाहिए। कई दिन कई में किसान भाया की अपनी फसल जी की खड़ी है और उन महीने सफेद लट लाग जा तो उनको आप नियंत्रण किन तरह करा। सफेद लटरे नियंत्रण वास्ते 4 लीटर क्यूनोल्फास 25% EC या इमिडा क्लोप्रीड 17.8 SL 300 ml प्रति हेक्टर 100 किलो बजरी महीने मिला परा और खड़ी जी की फसल है उन महीने आपने बुरकाव कर परा और पचे आपने सिंचाई करनी चाहिए। और उपचार जी को है मानसून जी की बरसात है उनरे 21 दिन पछे भ्रंगारी जी की संख्या है उनरे आधार माते आपने करना चाहिए। किसान भैया आ ही जानकारी के भाई प्रसाद पहला सफेद लटरो जी को समेकित प्रबंधन है वो आपने खेतर महीने आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो वगत पूरा वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणेजा ने सीख दिलाओ। राम राम।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर और FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम गणगौर।

0: देखो शीतल जी, अगर घर में दादा दादी दो साथ हुए तो कितो चोखो लागे है, क्योंकि बुजुर्ग है घर परिवार नहीं हुआ करे है, वह उनने जोड़न रखे है, और साथ ही अगर बडेरा नहीं वे तो अपन अनुभव कौन दिया करे। तो जिंदगी रा अनुभव है वे बडेरा सुई सीखना ने मिलिया करे, चाहे संस्कार हो, रीति रिवाज हो, या वाणी एड़ी बात वहां जो कि भावनात्मक रूपों अपन ने सुरक्षा प्रदान कर सके। मुसीबत रो वह एकमात्र सहारो लिया करे, अपन कितनी भी रीस आ जाओ तो वे समझा बुझा एकदम शांत करते हुए कि देखो भाई अब रो मत करो, और घर परिवार ने टूटने से हमेशा बचाए रखे है। तो बुजुर्ग तो आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखे।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखो बड़ा बुजुर्ग रो साथ जते ताई परिवार माथे रहा करे नहीं, तो हर मुश्किल रो हल है वे आपने बता दिया करे है। और वारी जो सूझबूझ है वो आपाऊँ बहुत ज़्यादा होया करे, क्योंकि उम्र रहे इन पड़ाव माथे वे बहुत सारा संघर्ष देखेड़ा हुआ है, बहुत सारा वारा अनुभव है, वासु भी आप सीख ले सका। हाँ, पर आजकल देखा कि देखो बुजुर्ग रे प्रति कई तरह रो गलत और बुरो व्यवहार री घटनावा बहुत ज़्यादा देखण में आ रही
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: कदी जानबूझ रहे तो कदी अनजाने में बुजुर्गा ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना रो सामनो करनो पड़े है। उम्र रही पड़ाव पर देखो वाने दवा और भोजन रे साथे साथे सम्मान और वाने समझण री भी जरूरत व्या करे है। बड़ा बुजुर्ग आप बताया जो घर री नींव हुआ ही करे है, और ई वास्ते वारे प्रति कोई बुरो बर्ताव नहीं हुए, इरे प्रति लोगा ने जागरूक करण सारू आज रो दिन यानी कि 15 जून ने संयुक्त राष्ट्र विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस रे रूप में मनाया जाने री घोषणा करी ही।
0: पर देखो पहली तो आपा शीतल आ चीज कदी नहीं सुनी, पहली का टाइम में लोग नहीं सुनता क्योंकि वे अपरा बडेरा ने घर में वो बहुत अच्छी तरह राखता, पर आज कटे न कटे एकलो और स्वतंत्र रहना चक्कर में ये चीज आएगी है। पहले कदी वृद्धाश्रम नाम भी हुनियो हो कहीं।
1: बिल्कुल, और ये चीज़ा बिल्कुल बढ़ती जो आधुनिकता है विनरे लारे हो ही रही है, और भी कई दूसरा कारण है, लोगा ने जो है समझने की जरूरत है। और आजकल बच्चा ने भी बहुत आ चीज़ा रे प्रति जो है संस्कार देना जरूरी हो गया है। तो समय निकाल कुछ पल है जका घर रे बड़ा रे साथ बिताना चाहिए, घर रे जरूरी काम और मुद्दा पर वारी राय भी लेनी चाहिए। आस
0: बिल्कुल
1: पास अगर आप कोई बुजुर्ग रे साथ कोई गलत बर्ताव देखो तो वाने पूछ रहे मदद करने कोशिश करो।

0: तो अब बात करा आपणे अठे राजस्थान री एक अहिड़ी कला री जो 700 सू 800 साल पुरानी है, और इन परंपरा ने जो है अठेरा जो कुछ खास परिवार है वे आगे बढ़ाए रिया है। और ये कला री अगर बात करा तो आ एक बहुत ही अनूठी कला है जो राजस्थान रे माए ही जो है विशेष रूप से जानी जावे है। मैं बात कर रही हूँ फड़ री, और फड़ चित्रण कला जो है राजस्थान रे भीलवाड़ा जिले री शाहपुरा कस्बा री नामी मानी जाया करे है, और इरो उद्भव 1800 ही होया करे है। और फड़ चित्रण रे बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देवन सारू आपा फोन रे माध्यम सु आमंत्रित करया हाँ फड़ चित्रकार आस्तिक तिवाड़ी ने, तो वासु फोन माते बातचीत करेला मंजू चारण।
1: आस्तिक जी, आकाशवाणी जोधपुर रे इन घनघोर कार्यक्रम रे अंगने आपरू गणमान स्वागत।
2: नमस्कार, खमा गणी, राम राम।
1: आस्तिक जी, सबों पहली श्रोतावा ने ओ बताओ कि आफड़ कला काई है और उनी काई विशेषता भी या करे।
2: देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में कई सारी लोक कलाएं, जो फड़ कला है वो 800 साल पुरानी यानी कि 13वीं सदी की लोक कला कही जाती है, और ये हस्त निर्मित कपड़े पर प्राकृतिक रंगों द्वारा इसे हम चित्रित करते हैं।
1: आस्तिक जी, आपरी इन कलारी शुरुआत किया भी कहीं आप घर में पारंपरिक तरीका वो काम करता है या आप खुद इन्हें सीखियो?
2: देखिए, बचपन से ही पेंटिंग के अंदर मेरा बहुत रुझान रहता था, और उसके बाद में जब इस लोक कला को मैंने सबसे पहले देखा पढ़ा, तो आपको मैं बताऊं कि मेरे परिवार में इस कला का कोई कलाकार नहीं है, और जब मैंने इस कला के बारे में पढ़ा जाना, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये लोक कला लुप्त तो होने की कगार पर है और समाज से थोड़ा दूर होती जा रही है,
1: बिल्कुल।
2: तो उसी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस लोक कला को करूं और लोगों को बताऊं।
1: फड़ बनाते टाइम आप क्या क्या चरण व्या करें और इनमें सब चुनौतीपूर्ण हिस्सों काई वे है? एक पूरी फड़ तैयार करना में आपने कितु टाइम लग जाया करे?
2: देखो, तो फड़ बनाने के लिए चरण मुख्यतः तीन तीन चरण माने जाते हैं। सबसे पहला कपड़े को तैयार करना। कपड़े को तैयार करने के लिए हम चावल का मांड और मैदा का घोल बनाते हैं, और रेजा नाम के कपड़े को हम जो भी चावल का जो मांड हमने तैयार किया है उसमें डुबो करके और उसपे फिर हम उसे लगाते हैं। रेजा नाम के कपड़े पर हम चावल का मांड और लई लगाते हैं।
1: पूरी फड़े तैयार करना में आपने टाइम की तो लग जाया करे?
2: ये जैसे हम बात करें, वैसे तो उसकी साइज अकॉर्डिंग देखा जाता है इतना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं, और कई कई फड़ ऐसी होती है जिसमें 1-2 महीने भी लग जाते हैं।
1: अच्छा आशिक जी, फड़ पेंटिंग में लोक देवता और वहां से जुड़ी उड़ी कई कथावां दर्शाया करे है, आपरी पेंटिंग रा विषय किकर चुनाव करो?
2: ज्यादातर मेरे जो विषय रहते हैं वो ऐतिहासिक और समकालीन रहते हैं, और जिसमें हमारे लोक देवता हैं, और आधुनिक समय में जिस प्रकार हम आज का समय देख पा रहे हैं, और पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे विषय में ज्यादा चुनता हूँ।
1: आपरी बनियोड़ी कोई ऐडी पेंटिंग जिकी आपरे हिवड़ा में रच और बसगी है, आपरे बहुत करीब है, उनके बारे में श्रोताओं बताओ।
2: देखो, वैसे तो सारी पेंटिंग ही मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन जैसा कि आपने बात, तो मैंने एक फड़ बनाई थी जो अभी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस मौके पर मैंने राम जी के राज्याभिषेक के ऊपर एक पेंटिंग बनाई,
1: बिल्कुल,
2: जो बड़े ही भक्ति से और बड़ी श्रद्धा से आस्था से उस पेंटिंग को मैंने बनाया, और वो मुझे सबसे अच्छी और सबसे मन को आकर्षित करने वाली पेंटिंग थी।
1: वो सोशल मीडिया रो जमानो है आजकल, और आपन देखा कि सोशल मीडिया माध्यमों कई लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सोशल मीडिया आपरी कला ने लोगों तक पहुंचाने में कितु योगदान दियो?
2: बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया को अगर हम आज के समय में सही तरीके से यूज करें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज के टाइम पे हम देखें कि पहले के टाइम पे हम देखते थे कि प्लेटफॉर्म तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज हमें एक ऐसा मंच मिल रहा है, स्पेशली जो लोक कलाकार हैं और लोक कला को जो बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमें एक मंच मिला है जिसके माध्यम से हम अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया ने काफी हमारी मदद की है, और हम इसका अच्छे

0: इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: भविष्य में आपरा काही लक्ष्य है और आप इन कला ने कठे तक ले जानो चाहो?
0: मेरा लक्ष्य है कि ये राजस्थान की जो लोक कला है वो भारत में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका डंका बजे और विदेशों में भी इसकी पहुंच हो, लोग बाग इसको जाने और ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और मैं देख पाता हूँ कि विदेशों में भी भारत में भारत की जो ये पेंटिंग है, राजस्थान की जो पेंटिंग है, जब वो प्रदर्शनियों में लगती है तो किस प्रकार हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है वो हमें दिखाई देती है कि किस तरीके से प्रतिनिधित्व करती है हमारे भारत का। तो मेरा यही रहेगा कि मैं जो हमारी फर्ड पेंटिंग है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रस्तुत करूं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए।
1: बिल्कुल, फड़ कला रे संरक्षण ने अगर बात करा तो आज सब मोटी चुनौती इन संरक्षण में कई आ रही है।
0: जैसे मैं खुद भी एक जैनजी हूं और मैं जैसा बताऊं कि जो मेरे भाई बहन हैं, आजकल हम देखते हैं कि हम अपनी जो कहानियां हैं, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, उसके बारे में हम कई बार बताना भूल जाते हैं। यानी कि आज के दौर में हम देखें कि आजकल जैसे कई नई नई चीजें आती हैं, लेकिन हम अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी जो कल्चर वाली चीजें हैं, कलाएं हैं, तो उन चीजों को हम आज के दौर में थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। और भूलने का सबसे मेन कारण ये है कि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, या जैसे हमारे जो दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहने की वजह से भी हम इन चीजों से थोड़ा दूर चले गए हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती यही है, जो जेन ज़ी है, यानी कि जो मेरे भाई बहन हैं या मुझसे बड़े हैं या और भी जो लोग हैं, उन्हें इसके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होने के कारण जो लोक कलाएं हैं और लोक संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही।
1: बिल्कुल,
0: मैं ऐसा मानता हूँ।
1: पहले रा लोग जो प्राकृतिक रंगा रो इस्तेमाल करता, तो आप री फड़ बनाओ उन टाइम, आजकल जो नया दौर में नई चीजा आ रही है, सब लोग आपरी नुए तरीको ले लेन सामी आ रही है, तो आपने भी लगे कि एडो नुआ तरीको है उन आप फड़ पेंटिंग ने ज्यादा प्रसिद्धि पाई सके?
0: देखिए, जो पारंपरिक तरीका है वो अपनी जगह है, और आज के दौर में हम जिस तरीके से क्योंकि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जैसा कि प्राकृतिक रंगों को और प्राकृतिक जो पारंपरिक तरीका है, अगर हम उससे तैयार करते हैं तो ज्यादा समय और ज्यादा चीजों की मांग करता है। लेकिन अगर हम आज के समय के जो रंग हैं और आज के समय की जो हमारे पास सुविधा है, अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो पारंपरिक तरीका अपनी जगह है, लेकिन जो नया तरीका है उससे हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो नए रंग हैं, जैसे कि हम पोस्टर या एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करें, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों को बता पाएंगे।
1: और कितना लंबा समय तक टिक्योड़ी रहे, इन वास्ते भी ऐडा कोई कलर आता रहला जो प्राकृतिक रंग आ तो वाने जल्दी नुकसान पहुंच जातो, या वे जल्दी ये कोई पानी रो छींटो भी पड़ियो है तो बिखर जाता। तो आजकल कोई ऐडा रंग आवे की परमानेंट आपरी छाप छोड़ जाओ उन माते?
0: बिल्कुल, आजकल जैसे कपड़े पे अगर हम कर रहे हैं या कागज पे हम कर रहे हैं, तो एक्रेलिक कलर आते हैं जो बिल्कुल उस सतह पर चिपक जाते हैं और फिर वो हटते नहीं, और उनमें चमक भी काफी होती। लेकिन आज हम बात करें कि प्राकृतिक रंग अपनी उसी जगह पर हैं। आज अगर हम देखें कि शेखावटी की जो हवेलियां हैं उन पर भी प्राकृतिक रंग है और आज भी वो बरकरार हैं, तो उन जो रंग है वो जो रंग है उनकी तो प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती, उन दोनों का तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो रंग है, एक्रेलिक जो कलर है, वो जल्दी तरीके से हम उसे काम में ले सकते हैं और वो लोगों की पहुंच में भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, और जाता जाता आप श्रोताओं के बीच इन पारंपरिक कला ने बारे में रुचि बढ़ाउन सारू की कहना चाहो?
0: जी बिल्कुल, मेरा कहना मेरे श्रोताओं को ये कहना है कि हमारी जो लोक कलाएं हैं, हमारी जो लोक संस्कृति है, खासकर राजस्थान की तो संस्कृति है, देखिए ये हमारी जड़ें हैं, और कोई भी वृक्ष जो है, हम पूरा जो भी समाज है वो वृक्ष है, और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो लोक कलाएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमारी जड़ें हैं। तो अगर हम खड़े हैं तो हमारी जड़ों की वजह से खड़े हैं, तो हम अपनी जड़ों को जानें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी संस्कृति को, लोक कलाओं को बढ़ावा दें और लोगों को बताएं।
1: बिल्कुल आस्तिक जी, आप अमूल्य समय निकाल और मासु जुड़िया इन सारू आप मोकले मान हिवड़े सु आभार।
0: बहुत बहुत आभार आप, धन्यवाद।
2: तो अवार पसुणी फड चित्रण कला माते फड चित्रकार आस्तिक तिवाड़ी सु मंजू चरण री फोन माते बातचीत।
3: વિપ્ર

0: तो मंजू जी, आपा देखो फड़ चित्रण ज्यों अपनी एक पारंपरिक कला है, यूं जो आपा देखा है, देखो पुराने टाइम में या पहले भी अबार भी जो है कई घर में जो लुगाया है जिको काम फुर्सत में या शौक रूप में करती, जैं कि देखो अपनी मम्मी दादी नानी टाबारे वास्ते सिलाई में बचोड़ा कपड़ा सू चिड़िया पर्स और दूजा खिलौना बनावती ही, और टाबरा ने वह बहुत पसंद आता है। यूं ही क्रोशे कपड़ा रा बैग, हाथ सु बनियोड़ा चिड़िया रा खिलौना और रंग बिरंगी की चेन आज देश विदेश में एक नयो स्टार्टअप बन गयो है। आपणी जो नवी पीढ़ी है वह आपणे जगह बड़ा बुजुर्ग या कला है या घर में वारे कोई भी एड़ो कलाकार अगर है तो विने वे एक सोशल मीडिया रे माध्यम से मंच दे दियो है और इन्हें एक ग्लोबल मंच प्रदान कर नयो रूप देर फैशन रे साथ इन्हें जोड़ दियो है।
1: बिल्कुल शीतल, आपकी यो जूम की पहली तो गुड़िया ऊँट आती चिड़िया या अपन कह सका कि भाई एड़ा रेता खुनखुनिया वगैरह एड़ा बनाता हा। पर देखो ए तो कहीं हाँ पुराने टाइम में जो जड़ो सामान अवेलेबल हो बड़ी चीजा बन जाती, पर आज रो दौर में अगर आप बात करा तो देखो आप जू जू नई नई चीजा देखने मिले नहीं, तो आप देखियो कि छोटा बच्चा वास्ते वे वो सींग वालो जो गुलाबी कलर रो आया करे उन्हें कहीं किया करे यूनिकॉर्न बच्चिया ने
0: यूनिकॉर्न
1: कितना पसंद है और आजकल बड़ा ज्यादा बिक रिया है
0: बिल्कुल,
1: बनाई
0: वह भी
1: रिया।
0: कपड़ा रे खिलौना जो है विने खिलौने रे तौर पर जो है बच्चा ने
1: हाँ
0: अगर बनाओ तो बहुत राजी व्या करे।
1: बिल्कुल, और पहले तो आपा देखो कहानियां में ही सुनिया आपा तो भाई एडो घोड़ो आतो हो और यूं कर, तो आजकल तो वास्तविकता में आए
0: बिल्कुल,
1: घोड़ो
0: और इन्हीं तरीके रे नया नया अगर आपा बच्चा ने जो है देखो अपने पारंपरिक तरीके से देर बनार देवा, जैसे वे जिराफ है या शेर है खरगोश है आने भी आप जो है इनो रूप दे दे हो, तो बच्चा जो है विने पसंद बहुत करया करे है। और इन्हीं तरीके से देखो क्रोशरी बात करा तो वह एक बुनाईरी कला है जिनमें सुंदर थाल पोश मेज पोश बच्चा रा कपड़ा और सजावटरी चीजा हमेशा से ही जो है बनाई जावती ही, पर
1: हाँ
0: आजकल देखो क्रोशेरा फूल आवन लाग गया, हेयर बैंड आवन लाग गया, क्लिपा है, बैग है, पर्स है, मोबाइल कवर, टोपी, स्कार्फ, जैकेट, श्रग, ज्वेलरी तक तक आएगी है क्रोशेरी, और साथ ही साथ घर सजावटी चीजा री तो आप पूछो ही मत, इतनी चीजा आपने जो है क्रोशेरी बनेड़ी मिल जाया करे है। और
1: और पहले तो अपन सिर्फ एक रूमाल यूज करिए वो क्रोशे रुबनी ओड़ो जका चारों तरफ किनारी भी आ करती, और
0: बिल्कुल
1: आजकल और पांचों ट्रेंड में आई हुए
0: बिल्कुल, और ये तो महंगो मिल रही है क्योंकि आजकल हर कोई नहीं बनावे है, क्योंकि पहले तो सगड़ा बनावता पर
1: अब तो
0: आजकल
1: देखो फ्रिज
0: कम हो
1: कवर
0: गया
1: है, हर तरीका का कवर है, बेडशीट तो कठारी चल गई है।
0: बिल्कुल। और आप सोशल मीडिया पर देखो ना तो बिल्कुल फैशन फैशन ने इनू जोड़ दियो है, आजकल जगह टाबर है नी वह आड़ा बैग लेना ज्यादा पसंद करया करे, मतलब
1: या
0: ब्रांड री
1: टाबरा
0: चीजा
1: री
0: लेना री
1: ड्रेस
0: बजाओ
1: माते भी एज फूल चिपियोड़ा रही, बटन जेड़ा लगोड़ा है उना माते एड़ा कवर चढ़ियोड़ा भाई।
0: बिल्कुल। तो कपड़ा सु बना बैगरी भी अगर बात करा तो विण में आजकल कहीं करे कि राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट बंधेज लहरिया और कढ़ाई रो मेल देखने ने आपने ज्यादा मिल रही है, इन वजह से खाली आपने ऐठे ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इरी पहुंच बहुत ज्यादा होएगी है और लोग इन्हें बहुत पसंद कर रिया है, जिन्हों कम खर्चे में आप रोजगार का अवसर भी लोगों ने जो है मिल रिया है, 18 कलाकारा ने भी जो है एक नयो स्टार्टअप कह सका वो मिल गयो है।
1: और दूजो यूं कह सका शीतल।

0: आपां की जका प्लास्टिक का खिलौना है बच्चा नुकसान करे और कपड़ा रा
1: हम्म,
0: बनियोड़ा है आप आने धो सको और पाचो साफ
1: बिल्कुल।
0: कर
1: बच्चा
0: काम
1: अगर मुंह में
0: करो
1: भी लेवे तो वाने की
0: कोई
1: नुकसान
0: नुकसान
1: नहीं।
0: नहीं है।
1: और खिलौना री जी आई आजकल की चैन रो चलन भी बहुत हो गया है। बैगा में आप जो है की चैन री तरह जो है आरा खिलौना जो है लगा सको हो, तो वो नवाचार भी अपने देखने ने मिल रही है। तो सोशल मीडिया रे माध्यम से नवी पीढ़ी जो है ये पारंपरिक कला ने ब्रांड रूप में ऑनलाइन मार्केट सू देश विदेश तक पहुंचा दियो है।
0: इन्हीं तरीकों आपने देखा कि पहले पुराना टाइम में आपारे घर में रालियां बनाया करता है तो कपड़ा पुराना कपड़ा बनाता। आजकल कहीं रहा छोटी छोटी कतरन है इन्हें जोड़ आपस में और इतनी सुंदर सुंदर आप देखो तो बेडशीटा है इनारा कवर है ऐसी कंबल है ए बन बनन आइडिया है कई तरह का बैठ का बनन आइडिया है। या आपने देखा कि भाई एक काथा कलारी बात करा तो पहले टाइम में कहीं तो जितो पुराना कपड़ा रहता नहीं इन्हीं शुरुआत जिन टाइम रही और बंगालू इन्हीं शुरुआत हुई उन टाइम पुराना कपड़ा हुए धागा खींच और उन्हीं धागा ने काम में ले और वह बनाता हा। और आजकल तो धागा नवा वड्डू का चलो फिर भी और उन काथा कला ना इन तरीकों सब जगह फैल इतनी फैल चुकी है कि जिनको हद नहीं। आजकल आपा भी ड्रेसों में काथारा
1: सूट
0: सलवार
1: पहरिया
0: सूट और
1: करा
0: सूट पहरा।
1: बिल्कुल। और साड़ियां तो आवे ही है, साथ ही साथ चादरा है वे भी आया करे है। तो कह सका देखो पहली इरे टाइम में जद बचेड़ा कपड़ा सो आपा तो बस यूं ही जो है शौक शौक में चीजा बना देवता, लेकिन आजकल ई कला ने सच्ची में जो है एक नवो मंच मिल रियो है और एक नई पहचान मिली है।

0: છઠ્ઠે રેવણિયાસુ જીવ જડીરો નાતો રહ્યા કરે હે. મરુધામાએ રૂખાને હર્યો રેવણ મેં ઓસબુ અપખુ હે ઓર ફોગરી જડ ભી ઊંડી હોયા કરે હે. જદી તો લોક કહેવે કે ફો ખેજડા પાતાળ રો પાણી પીવે હે. ઓર જ્યાદા જણા ગેરી હોણે સુ ઓ મિટ્ટી રે કટાવ ને ભી હે જકો રોક્યા કરે હે.
1: बिल्कुल सही बात की शीतल। वो बरसात रो पानी है वो अपन इन फोग ने एड़ा रेगिस्तान में जीव तो राखे और मज उनाला में वो हरियो रहे और इनी जड़ है वा और इनो बाँट है वो भरपूर बड़ी तो दिया करे है। बठारा लोगा ने गाय भेड़ बकरी ऊंट इनने खावे है और इन बाँट रा फूला ने फोग लो कहवा है।
0: बिल्कुल. और फोगलर और राय तो बड़ो स्वाद बढ़िया करे है. और
1: बिल्कुल
0: ये राय तेरी तासीर भी बहुत ठंडी व्या करे. इन वास्ते गर्मी में वो राय तो जरूर खानो चाहिए. और लूरो ताव उतारण में इन बांटरा हरिया पान का है वह अगर आप डील पर ना खो तो लूरो ताव है जको उतर जाया करे है.
1: बिल्कुल शीतल, इन वास्ते मने कुछ पंक्तियां याद आवे कि फोगले रो राय तो काचरी रो साग बाजरी री रोटली जागिया मारा भाग।
0: बिल्कुल. तो और अगर पौधे की बात करा तो इरा और भी बहुत ही ज्यादा फायदा है. क्या करे कि लकवेरे रोगिया रे इलाज में भी वो काम आया करे है. रोगी ने जो है इन वास्ते माचे पर लिटा दियो जावे है सुआन और माचे रे नीचे सु फोगरे पत्ता री भाप दी रीजे है. और
1: अच्छा
0: क्या करे इसु थोड़ो सो फर्क पड़िया करे वामे. और इरे फल ने घिंटाल कहवे जिनमें जिन्हें डांगर है जका चारे रो रूप में खावे है. खासकर ऊंट रो ओ बहुत ही पसंदीदा चारो व्या करे है. और जय खोड़ में अगर तिसाया मरो तो फोगरा पान का चाबो गया करे.
1: बिल्कुल। और इन्हीं तरह राजस्थान की अगर भौगोलिक परिस्थिति की बात करें या जलवायु की बात करें तो वो घणो जरूरी है फोग इन वास्ते। इन झाड़ीरो जो हरियो भाग रहे वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर इन बिन बावजूद आज आ झाड़ी आपरो अस्तित्व खोती जा रही है और इन जद्दोजहद कर रही है आपरे जीवन सारू मरुस्थल रो मेवो आज आपरो अस्तित्व कठिन कठिन खो रही हो। पर देखो कि एक बारी आ कथा है आप सुनी लो ला कि भाई लोक रमाए है नी इतिहास रमाने भी फोगरे इनू बहुत महत्व हो।
0: बिल्कुल. बीकानेर राजा राय सिंह जीरा भाई जका पीथल नाम सुप्रसिद्ध हा वाने एक बार दिल्ली रा बादशाह अकबर बुरहानपुर भेजा हा. और वाने वाका जो सूबेदार वठेरा सूबेदार बनायो हो वह देश सु आगा रिया तो वाने भी आपरे बीकानेरी याद आवन लागी. तो एक दिन वे घूमन ने गया तो अचानक वाने फोग दिखियो और फोग ने देखता ही वाने घणो हरक वियो और वह फोग कने जाए और बैठा और विनु बाता करण लाग गया हा कि तू तू से देसी रूखड़ो मैं सु परदेसी मैं परदेसी लोग माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग.
1: वास्तविकता में कितनी चौखी बात की है कि भाई मन तो अकबर भेज दियो पर फोग तू अकल ठकट है आन बैठ को है।
0: तो बिल्कुल मरुस्थल रा जो पौधा है मरुस्थल री पहचान होया करे है. इन वास्ते ही फोग है जको वो तो रेगिस्तान में चोखो लाग्या करे.
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, देसी खाने की तो बात ही अलग होया करे है।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बाजरी की रोटली और फलियां रो साग अगर बात करा तो मुंडे में पानी आ जाओ।
0: बिल्कुल, और उम्र बढ़ने रे साथ ही नहीं, शरीर में अपने देखो खासा बदलाव आया करे है। और खासकर बात करा आजकल रही तो तीसरी उम्र रे पछे ही आजकल तो कई तरह री खान पान में समस्या देखने आई रही है। जिया कि देखो शरीर में कमजोरी रहन लाग गई है, आपा ज्यादा की काम नहीं करा तो ही जो है थकिया थकिया जो है रह वहाँ, और ढील दुखन लाग जावे है, ज्यादा बीमार पड़न लाग गया है, शरीर
1: ज्यादातर
0: में
1: देखो
0: कमजोरी रहन
1: गोडा
0: लाग।
1: री समस्या हर कोई ने पूछो के मार तो दुख रिया है भाई। अब बार तो कैसा काम पा, ऐसे में बैठा कूलर में बैठा इनू दुखे, पर सर्दी में भी दुखे।
0: बिल्कुल, और नींद नहीं आवे आजकल लोगों ने, और साथ ही साथ बाल झड़नों तो देखो बहुत आम बात होगी है।
1: बिल्कुल
0: तो कैसा कहा कि तीसरी उम्र है 25 हुई ही अगर अपनी मांसपेशियां यानी जबकि कमजोर होने लाग जावे है, और ई वास्ते ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है जबकि घटन लाग जावे है।
1: प्रकटे शीतल इनु कारण वो भी है कि अपन ये जितनी भी सखे हैं बे दिन रात अपने घर रो काम में लागे उड़ी रहे और अपने खान पान माते उचित ध्यान नहीं दे पावे।
0: बिल्कुल, और ई
1: और
0: वास्ते
1: महिला
0: जरूरी
1: रिया
0: है।
1: करे घर री दूरी, अगर अपनी मम्मी अगर सो जावे तो पूरो घर केड़ो रह जावे। आप खुद सोचो, आप
0: बिल्कुल
1: कल्पना भी नहीं कर सका, तो घर री औरत अगर बीमार पड़ जावे तो पूरो घर ठप हो जाया करे। तो अपन अपन ध्यान रखना कितना जरूरी है ई वास्ते ही।
0: बिल्कुल, ये वास्ते ही आपने खान पान में आपने प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और प्रोटीन युक्त अगर भोजन की बात

0: करां तो राजस्थान रो जको पारंपरिक और देसी भोजन है वीणो ज्यादा प्रोटीन और कोई खान पान में है ही नहीं। जहाँ भी
1: बिल्कुल
0: बात करां मूंग करी मोठ चना पंचमेल दाल ज्वार बाजरा तिल मूंगफली दही छाछ राब मट्ठा और देसी घी अगर आप संतुलित मात्रा में लेवा तो शरीर ने जरूरी पोषण है जको दे सका। हाँ
1: और
0: और
1: अपन तो लेवा यहाँ साथ ही देखो परिवार में टाबरा ने रापर परिवार और सदस्य ने भी देना चाहिए क्योंकि प्रोटीन तो हर उम्र वास्ते
0: बिल्कुल
1: जरूरी है।
0: देखो बड़ा बुजुर्ग की अगर बात करा तो जदे ही तो बड़ा बुजुर्ग जो है आज भी आप देख लो नहीं घर में एक टाइम अगर खाणो
1: दाल
0: खाना
1: बने
0: दाल जरूर बने है
1: बिल्कुल
0: और वे कहवे है कि भाई वाने जरूर। और सुबह सुबह नाश्ते में शुरुआत में अपने अठे देखो अंकुरित अनाज ने शामिल करो जाओ तो हो और
1: बिल्कुल
0: दूध दही तो रो नाश्तो जो है विनो बढ़िया तो कोई नाश्तो हो ही नहीं सके।

0: और दूध दही तो रो नाश तो जो है विनो बढ़िया तो कोई नाश तो हो ही नहीं सके है। और भोजन में आप दही छाछ और हरी सब्जियां शामिल करो तो आप पूरा संतुलित भोजन है जो को तैयार हो जाए करे।
1: और बाजरा मक्का री रोटी हो या ज्वारी हो या बदल बदल आप धान ने लेता रहो ताकि आपके शरीर में कोई तरीका की कमी नहीं रहे। और मूंग दाल है, चना दाल है, ये तो लेना ही है। इन्हें साथ भी देखो बेसन रा चीला है, ढोकला है, ये भी जरूरी है क्योंकि अगर आने ले वहाँ तो भी अपने पर्याप्त मात्रा में अपन मिल जाए। और सत्तू देखो बिहार और यूपी में तो चनों से कन्वीनो आटो बनाए और उन्हें काम मिले वो बहुत ही गुणकारी रहे चाहे गर्मी रो मौसम रो। और सत्तू रे आटा रही यानी लाडू बनाया करे सर्दी वास्ते।
0: बिल्कुल। और बारह रो भोजन फास्ट फूड उम्र बढ़ने के साथ देखो पेट संबंधी समस्या पैदा कर सके, इन वास्ते
1: बिल्कुल
0: आने जो है कम कर देना चाहिए इन उम्र में। और ये वास्ते स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक भोजन जो है बढ़ती उम्र में अपने शरीर ने बढ़िया रखा करे है।
1: तो हमेशा ले तो रहना है। इन साथ ही सुना एक गीत।

0: और देखो, मिस रीरो बाग तो लगा देवा, और बाग लगाड़ो जो है, बाग लगाड़ो बगिया तो सुंदर लागे ही करे, और अपन है बहुत सारी चीज़ा भी है जो कि मिल जाए करे है।
1: बिल्कुल सही बात है। और शीतल देखो, हमेशा हम पारिक कार्यक्रम में एक कहावत जरूर बताया करा। तो अब बखत हुई गो इन कहावत रो, और कहावत कुछ यूं है आज री कि मूर्ख ने समझावता ज्ञान गांठ रो जाए। इनो अर्थ वो है कि मूर्ख व्यक्ति ने ज्ञान देना व्यर्थ है, उन्हें समझाना माथे आपरी बुद्धि और ऊर्जा दोनों ही व्यर्थ ही जाया करे।
0: बिल्कुल, तो कई व्यक्ति है जगह बिल्कुल मूर्ख होया करे है, और जो है अपनी बात ने समझे भी नहीं है, तो उन माते अपन जो है समय व्यर्थ नहीं करना है, और आप जो है अपनी बुद्धिमता सु काम लो। और अपने अठहरी बात करा तो अपने अठहरा लोग यूं भी बहुत ज्ञानी रहा है, और खासकर बात करा अठहरा कुछ अच्छा लोग रही, तो वह हमेशा सु ही अपनी इन धरती रे वास्ते काम करता रिया है, इन प्रकृति रे वास्ते काम करता रिया है। और अपने अठारह गांव या अगर बात करा तो पूरा गांव मिल रहे जो है हमेशा कोई ना कोई एक लूठी जो है तकनीक कह दो या कह
1: या
0: दो
1: एडी कोई रीति या
0: रीत कह दो।
1: परंपरा अपना लेवे, उनसु देखो भलाई सबरी हुई है करा।
0: बिल्कुल, और एड़ी एक आज रीत परंपरा या तकनीक कह दो, मेरी बात करा पचेरी गांव री जिकी है एक पेड़ एक मटको तकनीक कहो या एक पेड़ एक मटको रीत, पारंपरिक और बहुत ही फायदा वाली जल संरक्षण और वन संरक्षण रिया एक विधि है। ये विधि में राजस्थान रा झुंझुनू जिले रे पचेरी गांव में सूखा और रेतीला क्षेत्र रे माए पेड़ा ने हरा भरा भरिया राखण में आ बहुत ही सफल री है। इनमें पानी री तो बचत वही है, साथ ही साथ पौधा री नमी भी बनियोड़ी रहे है।
1: बिल्कुल तकनीक है बा काम की कर करे शीतल। एक मटको अपन लेनो है, और मटको जेटा अपन पेड़ लगाओ उनसे थोड़ो सो ऊपर ही खाडो खोद देनो, उनने पाड़े मटका ने भी गाड़ देनो, और उन मटका ने भरियोड़ो रखना, ऊपर ढक्कन लगा दो ताकि, और पछे उन ऊपर मिट्टी लगाई दो
0: और नीचे
1: तक।
0: छेद कर देवानी।
1: बिल्कुल छेद कर दो ताकि वो पानी जो मटका रो है वो वाष्प बनन ऊपर नहीं उठे, और उन छेद मु छेद बिल्कुल बारीक करना है ताकि थोड़ो थोड़ो पानी रिस अर पेड़ री जड़ तक जावे और
0: बिल्कुल,
1: उन्हें
0: बूंद
1: नमी
0: बूंद
1: बने।
0: बूंद बूंद सिंचाई है जबकि पौधा ने मिल जावे, तो
1: बिल्कुल
0: इस हो ही कहें कि एक तो पौधा जल्दी जड़ पकड़ ले क्योंकि विंड में नमी बनी रही,
1: हाँ
0: और जड़ पकड़ ले ही तो फिर भी पेड़ रो की नहीं हो सके क्योंकि वटे देखो आंधिया बहुत आया करे है, तो पेड़ जो अगर शुरुआत में आप जब पेड़ लगावा नहीं तो वेरी जड़ा अगर मजबूत नहीं हुए तो वह पेड़ उखड़ भी जाया करे है। और सूखा क्षेत्र वास्ते आ तकनीक जो है बिल्कुल वरदान है, खरपतवार में ने आर नियंत्रण में रखे, आसपास घास नहीं होने दे, और कम खर्चीली है और पर्यावरण रे अनुकूल भी है।
1: बिल्कुल यूं तो आप अगर सिंचाई करें तो देखो पानी खूब बेवेला, और आड़ पड़े अड़े पेड़ पौधा झाड़ियाँ जंखाड़ उग जावेला, तो वह खरपतवार है बा इन तकनीकों आप उगनू बचाए सका। हाँ
0: बिल्कुल, और एनी तरीका सु राजसमंद रे पीपलांत्री गांव री बात करा तो एक बेटी रे जन्म माथे 111 पेड़ लगायो जावे है, अभी जो है एक वन संरक्षण तकनीक कह दो या रीत कह दो अभी बहुत ही ज्यादा
1: और
0: अच्छी
1: उन्हें
0: बात है।
1: पेड़ ने देखो शीतल एक भाई रे जिया पाल पोषण वाला लड़की बड़ो करिया करे, और हर राखी रे दिन आन उन पेड़ रे राखियां बांधिया करे, और त्योहार 18 देखन रे लायक है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं तरीके की जो कि रीता है वह अपने अठे प्रकृति संरक्षण रो काम कर रही है, और अपने भी जो है आ रीता रो मान सम्मान रखनो है और पेड़ पौधा ने बचा रखनो है।

0: और आज देखो आपा बात कर रहे हाँ इति तरीके री अठेरी रीता री, तो अपने अठे देखो कई रीता है जो कि बहुत अच्छी भी है, पर कई बार एड़ी रीता होया करे है जो समाज रे वास्ते बहुत बुरी भी होया करे है, और लोग जो है इन्हें कुरीति रो रूप दे दिया करे है।
1: बिल्कुल ही उन तरीकों अगर आप देखा तो आप दहेज ने लेन और देने की जकी रीत है बा बड़ी ही
0: खतरनाक होएगी है,
1: खतरनाक।
0: क्योंकि देखो पहली आपने अठे लेन देन री अगर बात करानी तो हर जो परिवार है आपरी बेटी ने जो है आपरे हिसाब सारू या आपरे प्रेम में जो है चीज़ां दिया करता है, और वह एक बहुत ही प्रेम भरी कह सका रीत होया करती ही।
1: पर वे उपहार स्वरूप देता है। पर देखो आजकल तो आ एक तरीका कुरूति बन गई है और हर व्यक्ति इन्हें ज्यादा ज्यादा लेना की कोशिश करे कि मैं आप बच्चा माते तो खर्च करी हूँ तो आपने तो देना पड़ से।
0: बिल्कुल, और आजकल देखो कोई सोचा करे कि मतलब अनपढ़ समाज में या मतलब बिना पढ़ा लिखा लोग जो है ये चीज़ ने कर है, पर एड़ो नहीं है, आजकल
1: बहुत पढ़िया लिखे
0: पढ़िया
1: हैं
0: लिखा
1: लोग।
0: लोग भी अड़ा कर रिया है, और अपन हर आए दिन जो है अखबारों में भी देखा इन तरीके की खबर आया करे कि दहेज सुप्रताड़ित होड़ कोई महिला रे साथ जो है दुर्व्यवहार हो रही है या वीरी जान ले ली गई है, तो इन तरीके की खबर जो है बहुत ही सुनने में भी बहुत बुरी लग गया करे है, और एक समस्या ने बहुत ही मोटे तौर पर आपने दिखाया करे है कि किन तरीके से दहेज प्रथा है जो कि बहुत ही मोटी कुरीति बनती जा रही है।
1: बिल्कुल, और आजकल देखो पैसा वाला लोग तो देखा देखी के चक्कर में अनाप शनाप करता जा रहा है। पर अपन इन्हें देखा देखी नहीं करना है, जितना आपरी चादर है उतना ही पग फैलाओ, और इतना भी वाना आपरे ऊपर हावी मत रेवन दो कि भाई वे लोग अपन कनु ज्यादा मांग करें।
0: बिल्कुल, और इन्हीं वास्ते अपने दहेज जड़ी कुरीति नी जो है इन्हें अपने रोकनो है, और
1: और
0: अगर हर
1: जड़ सु
0: व्यक्ति
1: मिटाना री
0: जड़ सो
1: कोशिश
0: मिटा
1: की
0: हर व्यक्ति अगर सोच ले आपरे घर में अगर वो कदम नहीं उठावे, वो दहेज लेनो और देनो अगर बंद कर देवे, तो अपने आप यो जो समाज है वो सुधर जावे लो।
1: पर शुरुआत आपरे घर से ही करनी पड़ी, क्योंकि आपा दुनिया ने नहीं बदल सका, आप अपने आप ने जरूर बदल सका।
0: बिल्कुल, और ये बात मैं तो ही सुनावा एक और गीत।

0: मंजू जी, पहली बुजुर्गारी सीख होती कि घर बनाओ छोटो, कपड़ों पहनो मोटो और खाओ बाजरे रो रोटो।
1: बिल्कुल
0: पर
1: सही बात है।
0: आजकल ऐसी बिल्कुल बदल गई है। आजकल हो क्यों है, घर बनाओ मोटो, कपड़ों पहनो छोटो, कर्जो ले लो मोटो, खाओ होटल रो रोटो और रहो हमेशा टोटो। तो इन
1: सही है।
0: वास्ते बिल्कुल, अगर आप बड़ा बुजुर्गारी सीख नहीं मानोला तो जो है जीवन में आप हमेशा दुखी पाओला। इन वास्ते बुजुर्गारी सीख है जे वह कदी नहीं नकारनी चाहिए। तो इन बात माते ही सुनावा एक और गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।

0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा अरिसा पिठा मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिनभर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ झारखंड कोंकण गोवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।

0: सकते हैं।
1: तो अब चलिए, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।

0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पो, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा।

0: सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
1: अप्पू!
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
1: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ।
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
1: क्या, कितने पैसे चाहिए?

0: किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
0: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
0: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
0: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं,
1: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
1: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े-खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता

कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार

0: पूछा।
1: अच्छे कंचे हैं ना?
2: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
1: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
1: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? तो
0: वो नहीं जानता था
2: फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया।
1: दे दो।
2: ये लो।
1: कागज
0: की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़ कर माँ के गले लग गया।
1: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से
3: खुशी झलक रही थी।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दोपहर के ठीक 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब प्रारंभ होती है, जिसकी शुरुआत करते हैं युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी से।

0: हाँ जी, स्वागत है आपका इन खूबसूरत लाइंस के साथ कि शुरू की महफिल जब दिलों से जुड़ती है तो हर फरमाइश एक खूबसूरत याद बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त नीतीश और आप सुन रहे युववाणी का मंडे स्पेशल फरमाइशी प्रोग्राम, जो आपकी पसंद ही हमारी प्रस्तुति बनती है, जहाँ आप हमें अपने चाहने वालों के नाम, उनकी पसंद के गाने और दिल से निकले जज्बात भेजते हैं, और कभी खत के जरिए तो कभी मेल से तो कभी व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप किसी अपनों के लिए अपने नाम या फिर गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो आज की शाम बिल्कुल युववाणी का प्रोग्राम आपके लिए, और हमें लिख सकते हैं आप। हमारा ऑफिस का पता है आकाशवाणी जोधपुर, पावटा सी रोड, और मेल एड्रेस का पता है युवा पसंद jodhpur@gmail.com, और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो है 9413329359। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9413329359। आपका संदेश पहुंचेगा और आपकी फरमाइश जरूर बजेगी आपके अपने रेडियो पर, ऑनली ऑन FM 102.1 मीडियम वेव 531। और आज की शाम मेरे साथ है
1: आपकी रेडियो दोस्त हर्षिता टाक। तो शुरू करते हैं आज का ये शाम का सफर और सुनते हैं आज का पहला

0: कोई।
1: रमेश सरवत देशमुख की। वही गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुड़लाल, अविराज, गुरनौर और शुभदीप की।

0: श्रोताओं, भी आपने सुना गीत नीले नीले अंबर से फिल्म कलाकार और किशोर कुमार की दिलकश आवाज़ में। और वाकई नीले नीले अंबर पे जब भी काली घटा छाएगी ना, तो इस गर्मी से हमें राहत ज़रूर दिलाएगा। और फिलहाल जो अगले गानों की फरमाइश आई है वो आई है ज़िला खंडौल संवाद मध्य प्रदेश से अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, भाई राजकुमार और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश। और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो गीत है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।
1: और ऐसे ही सेम फरमाइश आई है पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा की। वही किशनगंज बिहार से रविंद्र, मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया की।

0: श्रोताओं, भी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ में गीत ये दिल तुम बिन फिल्म इज्जत से। और हाल फिलहाल आप इंजॉय कर रहे युवानी ऑनली ऑन एफएम 102.1 पे फरमाइशी प्रोग्राम नीतीश और हर्षिता के साथ।
1: बिल्कुल नीतीश, जोधपुर की इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी के बीच जब भी हवा का एक ठंडा झोंका आता है तो दिल खुश हो जाता है। वैसे आज हवाओं का भी दिन है, यानी ग्लोबल विंड डे, तो इस ठंडी हवा के झोंके का मजा लीजिए, फोन को थोड़ी देर आराम दीजिए और सुनते रहिए हमारा फरमाइशी कार्यक्रम। और इसी के साथ आगे की फरमाइश आई है
0: हर्षिता, आगे की फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की।
1: तो बढ़ते कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ जो अगली फरमाइश आई है वो छोटी बलिया खरजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाला दुखानी सफ़द जूही इकबाल इमरान अहमद और नई दिल्ली कापसेड़ा बॉर्डर से बिटिया आसमा आसमा परी रबिया अशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली की ओर से।
1: वही बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद इकबाल अखलाक आमना आसमा राबिया परी आशु जूही सदफ बागवान की, तो सुनते हैं ये प्यारा सा फरमाइशी म्यूजिकल ट्रैक।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी में। और इस आवाज़ का नाम नितेश और मेरे साथ हर्षिता है और युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। और इस बीच जो अगली फरमाइश आई है वो गांव नाथना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता की तरफ से।
4: वही कबीर रेडियो श्रोता संघ छत्तीसगढ़ से देवशंकर, अजय, तुषार, टॉली, बेबी, पूजा, राधिका और प्रभा देवी की।
3: और वही साथ ही साथ बाड़मेर से प्रहलाद सारंग। तो चलिए इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ चल रहा है मंडे स्पेशल फरमाइशी प्रोग्राम ओनली ऑन FM 102.1 और मीडियम वेव 531 हर्ट्ज़ पर। और आज की शाम मैं हूँ आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नितेश, और मेरे साथ हर्षिता। युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, और इस बीच जो अगली फरमाइश आई है वो फिल्म कट्टी पतंग, गीत प्यार दीवाना होता है और गायक है किशोर कुमार। और ये फरमाइश की है पद्मा टॉकी से, नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र शाह।
1: वही सेम फरमाइश आई है लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहब्बत अंसारी, गुलाम साबिर और महराज की। वही जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिचारनिया की।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद फरमाइशी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फरमाइशी पिटारे में से अगली फरमाइश किसकी निकलती है। तो अगली फरमाइश आई है हर्षिता भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परियार। वही साथ ही साथ जो अगली फरमाइश आई है वो कहाँ से आई है?
1: बिल्कुल नितेश, अगली फरमाइश आई है बागपत यूपी से संजय नमन आपा ढिंगड़िया की। वही नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी दिशा गोस्वामी की।
0: और वही इसी गाने के लिए जो फरमाइश आई है वो आई है प्रताप नगर जोधपुर से, मनहूर, सरोज, पंकज, करण, अर्जुन। तो चलिए इनकी पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ जी, वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का युववाणी प्रोग्राम में। और जो अगली फरमाइश आई है वो रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर से लालगिरी हेमलता हिना हर्षित और खुशी की तरफ से।
1: वही फ्रांसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डोडी की, वही सेक्टर 67 चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, कैथल और अमनदीप की।

0: चेतन प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है युवा बसंत फरमाइशी प्रोग्राम में। और जो अगली फरमाइश आई है वो खांडा पलसा जोधपुर से है। आयशा, फ़हिमा, अफसाना, मिसबा, सायरा, साहबीर, मोहम्मद, अरसलन, अहमद, आसमा और साले।
1: वही कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टी बजाज की, वही जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस,

0: श्रोताओं, ये सिलसिला था फरमाइशों का और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं था आज की शाम आपके साथ आपका रेडियो दोस्त नीतीश, और मेरे साथ
1: आपकी आरजे दोस्त हर्षिता टाग। हमारे साथ कंसोल पे थे कल्याण जी, और वहीं प्रस्तुति थी कार्यक्रम की राजेश लामरौर, और संयोजन था मनीष कुमार सोलंकी का। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल

0: खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Addressing a joint press conference after the talks, Mr. Modi said India and Slovakia have decided to elevate ties to the status of comprehensive partnership.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: Prime Minister Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. He said an MOU has also been signed on digital technology to open new avenues of cooperation between the two countries. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, digital transformation and advances in artificial intelligence, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Later in a social media post, Prime Minister Modi said his meeting with Prime Minister Fico is a very special moment for the India-Slovakia friendship. In a social media post, Mr. Modi said that the talks between both leaders covered cooperation in sectors like automobiles, railways, advanced manufacturing and green technology. The Prime Minister noted that the India-EU Free Trade Agreement will also add momentum to the India-Slovakia partnership. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon tomorrow to participate in the summit. India has welcomed the understanding reached between the United States and Iran on ending the conflict in West Asia and opened the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said, India hopes that the implementation of this understanding will help restore peace and stability.

सुगम संगीत प्रसारण समय रहेगा आज रात्रि 9:30। श्रोताओं, आज की सभा में आप सुनेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं कल की प्रसारण सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। आकाशवाणी जोधपुर की श्रोता अपना फरमाइशी कार्यक्रम मनचाहे गीत सुनेंगे कल रात 10 बजे से। आप भी अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। बस मेल लिखकर भेजना है आपको मनचाहे गीत 531@gmail.com पर। ईमेल पता है manchahegeet531@gmail.com। श्रोताओं, कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा कल शाम 7 बजे से। वहीं कार्यक्रम असीमा डेरी गूंज आप सुनेंगे 7:30 पर।

कृषि कार्यों से जुड़े किसान भाई और बहनें अपना पसंद का कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगी कल दिन में 1:05 पर। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का प्रसारण समय रहेगा कल प्रातः 8:30। वहीं आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत कल प्रातः 7 से। श्री रामचरितमानस का 28वां भाग आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुनेंगे कल प्रातः 6:15 पर।

आकाशवाणी जोधपुर की महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका प्रसारित किया जाएगा कल दिन में 1:15 पर। कल की प्रसारण सभा में आप लोक संगीत के कार्यक्रम सुनेंगे कल सवेरे 10 और 12 बजे। श्रोताओं, यथा कार्यक्रम विवरण हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से प्रस्तुत है देशगान।

श्रोताओं, अभी आप समूह स्वर में सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार रिले किए जाएंगे और उसके बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्येन प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया सम्बन्धान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तः। भारतेन पश्चिमेशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जेवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडांगणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकान्तरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया सम्बन्धान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा

0: ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
0: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थ व्यवस्थां प्रौद्योगिक विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायि प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें तमाब्दे स्लोवाकिया देशस्य स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिक संकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः, स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने वित्तमंत्री अवोचत् यत् खरीफ इति ग्रीष्मर्तौ धान्येभ्यः पर्याप्त मात्रायां उर्वरकोपलब्धता वर्तते। तयोक्तं यत् ऐषमः प्राविट नैयून्यं स्यादिति संभाव्यते, तथापि अस्माकं पार्श्वे पर्याप्त भण्डारः विद्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आयुष मन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां 12 अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य भव्यायोजनाय औपचारिक कार्यक्रमाणां शुभारम्भो विहितः। आयुष मन्त्री प्रताप राव जाधवः राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अवोचत् यत् मुख्य कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे कोलकातायां भविष्यति। अमुना उक्तं यत् अत्रावसरे 45-निमेषात्मकं योगसत्रम् आयोजयिष्यते। मुख्य कार्यक्रमेण सह हुगली नद्यां 500 नौकासु योगसत्रस्य आयोजनस्य योजना वर्तते।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: आयुष मंत्री अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य समारोहात् पूर्वं गतदिने विशेष योग कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणे योगसत्रे 4,00,000 जनैः प्रतिभागं विधाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्व कीर्तिमानं संरचितम्। अवधेयं यत् अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः वर्तते। फ्रांसदेशस्य एवियन नगर इति नगरम् अद्य रात्रौ आरभमाणस्य 50-द्विपञ्चाशत्तमस्य G7 सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं सज्जम् अस्ति। अमेरिका ईरान देशयोः 70-100 दिवसीय युद्धस्य समाप्तये सन्धेः निर्धारणेन

0: एषा सभा महत्वपूर्णेन सकारात्मकेन विकासेन सह अवलोक्यते। फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जी सप्त देशानां नेतृणां औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। भारतं ब्राजील दक्षिण कोरिया केन्या मिश्रदेशः च सहभागित्वेन शिखर सम्मेलने आमन्त्रिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं श्वः एवियन नगरं गमिष्यति। उत्तर प्रदेशस्य जेवर क्षेत्रे नोएडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां संचालनम् अभवत्। एतत् हि देशस्य नागर विमान क्षेत्रे महत्वपूर्णं सोपानं निर्दिशति। उद्घाटन समारोहं संबोधयन् केन्द्रीय नागर विमानन मन्त्री के राममोहन नायडुः अवदत् यत् विमानस्थानकस्य प्रथमचरणे प्रतिवर्षं 1.2 कोटि यात्रिणां यात्रानुमानं वर्तते। अनन्तरं प्रतिवर्षं 7 कोट्यधिक यात्रिणां यात्रानुमानं भविष्यति। सः अवदत् यत् एतत् विमानस्थानकं राष्ट्रिय सेवायाः अन्ताराष्ट्रिय विमानसेवायाः च परिचालनस्य केन्द्ररूपेण कार्यं करिष्यति। विमानस्थानकस्य कृते स्वभूमिं दत्तवतां 70%-100% कृषकाणां समूह जेवरक्षेत्रस्य विधायकस्य धीरेन्द्रसिंहस्य नेतृत्वे अन्यैः च साकं जेवर विमानस्थानकात् लखनऊनगरं प्रति प्रथम वाणिज्यिक विमाने यात्रां कृतवन्तः। ऋतुविज्ञान विभागेन देशस्य पूर्वोत्तर भागे उपहिमालयीय क्षेत्रे पश्चिम बंगाले च श्वः यावत् प्रबल वृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन राजस्थाने पूर्वीय उत्तर प्रदेशे ओडिशायां मध्यप्रदेशे च झंझावातस्य नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च उक्तं यत् दक्षिण पश्चिम प्रावेट प्रभावाय स्थितिः अनुकूला वर्तते। ऐषमः फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिकोदेशस्य मोंटेरे क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एफ क्रीडायां ट्यूनेशिया देशं 5 अंकान्तरालेन पराजयत्। स्वीडनदेशः द्वितीयार्धे प्रबलं प्रदर्शनं कृत्वा विश्वसनीयं विजयं प्राप्नोत्। अनेन विजयेन स्वीडनदेशः स्वस्य विश्वकपस्य अभियानस्य प्रबलम् आरम्भम् अकरोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बागड़े आज सीकर के जसरासर में शहीद स्मारक में शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा अनावरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सीकर झुंझुनू और नागौर सहित शेखावटी क्षेत्र के जवानों का देश की तीनों सेनाओं में विशेष योगदान है। राज्यपाल ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज भारत दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को भी समान महत्व दिया है। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में

0: रिकॉर्ड निवेश आया है और व्यापक बदलाव हुए हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों में योग सत्र आयोजित करने की योजना है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक तथा विशेष योग्यजन को सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र में लगाए गए शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह शिविर सरकार की सुशासन और जनसेवा की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने शिविर में आवेदकों से संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से भी स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज भरतपुर और डीग में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने करौली में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सलूम्बर जिले में कल इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहरी सेवा शिविर नगर परिषद क्षेत्र में लगाया जाएगा, वहीं ग्रामीण सेवा शिविर कई ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर आज एक कार और डंपर के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज जारी है। कार में सवार ये सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे और बीकानेर के मुकाम से वापस हरियाणा जा रहे थे। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए नागौर के अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत का आज उनके पैतृक गांव पांचोटा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनकी पार्थिव देह विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाई गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ ने खेमाराम कुमावत की देह पर पुष्प चक्र

0: अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देवरी गांव के पास एक कंटेनर ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया। कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 25 करोड़ रूपये से ज्यादा आकी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था। प्रदेश में बच्चों को दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए कल से राज्यव्यापी स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, साफ पीने का पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि देश में डायरिया आज भी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। गर्मियों और बारिश के मौसम में बच्चे दस्त रोग से अधिक ग्रसित होते हैं और उपचार नहीं होने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार की थीम पर गतिविधियां आयोजित होंगी।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक PAM का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस माह की बैठक का मुख्य विषय पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रहा। विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि इन बैठकों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के लिए जन जागरूकता को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए परिवारों की सहभागिता को और खासतौर पर पिता की भूमिका को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में आज कहीं आंधी चली तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में सुबह अंधड़ के बाद तेज बरसात हुई जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। झुंझुनू में भी दोपहर बाद मौसम बदला और कई जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। चूरू और डीग में आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। राज्य के कई अन्य पूर्वी जिलों में भी आंधी और तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। इन गतिविधियों से पूर्वी हिस्सों में पारा गिरा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भी उमस और गर्मी का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभागों में अगले 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। देशभर में 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू हो जाएगा। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 7,581 करोड़ रूपये से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा जिसे आवश्यकता और मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। इस तरह राजस्थान में इस योजना के लिए कुल 11,581 करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध होगी जो प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। उदयपुर जिले में इन दिनों मानसून की आहट के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी है। वहीं जिले में जल संरक्षण, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक गतिविधियां और जनसरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम दूध तलाई क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव टी रविकांत, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद प्रभात फेरी और कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। उदयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग के शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पेयजल प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खाद और बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। मॉनसून के आगमन से पहले उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक प्रमुख ट्रैवल पोर्टल द्वारा जारी भारत के शीर्ष 15 मॉनसून पर्यटन स्थलों की सूची में उदयपुर को देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। राजस्थान से केवल उदयपुर और माउंट आबू ही इस सूची में शामिल हुए हैं। सूची में केरल का मुन्नार पहले और गोवा दूसरे स्थान पर है। मानसून के दौरान पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और स्वरूप सागर झीलों के भरने के साथ अरावली क्षेत्र का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। सज्जनगढ़ स्थित मॉनसून पैलेस से झीलों, पहाड़ियों और बादलों का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उदयपुर ने मॉनसून पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने और बड़ी आबादी को न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग रखी गई है। उदयपुर की बेटी खुशी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनकर मेवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली है। फ्लाइंग ऑफिसर खुशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में प्राप्त की और बाद में बीएन विश्वविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई की। खुशी ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास कर एसएसबी चयन प्रक्रिया पूरी की और हैदराबाद में पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी चयन हो चुका है। उमरड़ा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एमबीबीएस, एमडीएमएस तथा विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब जिराफ लाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। वन विभाग द्वारा जिराफ के लिए विशेष एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। सेंचुरी क्षेत्र में बनाए जा रहे इस परिसर में पर्यटकों के लिए पाथवे और जिराफ के लिए अलग होल्डिंग तथा डिस्प्ले एरिया विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर करीब 2,70,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नर और मादा जिराफ का जोड़ा उदयपुर लाया जाएगा। जिराफ के आने के बाद वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उदयपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो प्रदेश राज शूरवीर

0: دیشری حفاظت مائے خاص کام کینو آیوش منترالے بارہمو انتراشٹری یوگ دیوس مناون شروع آج اوپچارک کارکرماری سروات کینی بیکانیر ضلع ریشری ڈونگر گڑھ مائے بھیا سڑک حادثہ رے کارن ایک ہی پریوار رات چھ جنا ری موت ار پردیش مائے بچہ نے دس تھوں بچاون ار علاج سارو کال سٹاپ ڈائریا کیمپین شروع کریو چا ویلا समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सीकर जिला रा जसरासर माए शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारी मूर्त रो अनावरण कीनो ई मौके श्री बागड़े शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारा बलिदान ने याद करता थका कहो कि हमारी शहादत आवती पीढ़ियां ने हमेशा सीख देवेला राज्यपाल कहो कि राजस्थान शूर वीरां री धरती रही है वह कहो कि नागौर सीकर और झुंझुनू समेत शेखावाटी हल्का रा जवान देश री हिफाजत रा काम माए मोटो योगदान दीनो है राज्यपाल कार्यक्रम माए शहीद रा परिवार वाला रोई मान कीनो और स्मारक परिसर माए पौधा रोप्या केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि भारत मजबूत भरोसाओं भरिया देश रा तौर सामने आ रहो है वे आज जोधपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल रा कामकाज रे उपलब्धियां रो जिक्र कीनो शेखावत कहो कि भारत दुनिया री उम्मीदां रो केंद्र बन गयो है और साल 2047 ताई विकसित देश बनवा ओड़ी तेजी बढ़ रियो है वे कहो कि लाडला 12 साल माए देश माए जबरदस्त निवेश आयो है और मोटा बदलाव आया है
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है
0: 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में आयुष मंत्रालय री ओर आज नई दिल्ली में औपचारिक कार्यक्रम शुरू करी चिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ जीवन के लिए योग राखी चियो है आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली में खबर नवीसा ने बतायो कि योग दिवस रो खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में कोलकाता रा रेड रोड माथे रखियो जावेला वे बतायो कि इन मौके 45 मिनट रो योग प्रोटोकॉल रखियो जावेला खास कार्यक्रम सा गई हुगली नदी माए 500 नावा माए योग सत्र रखण री योजना है
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कीनो वे शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर सरकार कानियों जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रा बारा माए जानकारी हासिल कीनी मुख्यमंत्री पात्र लोगों ने पट्टा सर्टिफिकेट मदद री रकम रा चेक और विशेष योग्यजन ने जिंदगी आसान बनावन रा साजो सामान दीना मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई जयपुर विकास प्राधिकरण रा नागरिक सेवा केंद्र माए लगाया जा रहा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कर व्यवस्थावां रो जायजो लीनो ई मौके वे कहो कि ए शिविर सरकार री सुशासन और जन सेवा री सोच ने सांचीकरण माए खास काम कर रहा है मुख्य सचिव शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कीनी वे अहलकारा ने शिविर माए आवन वाला लोगों ने साफ कोई सागे आसान तरीकाओं टेम सर सेवा मुहैया करावन रा हुकम दीना
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया इसमें यही निर्देश दिए कि

0: ग्राउंड स्तर पर पहुंचें और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
1: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज भरतपुर और डीग माई लगाई जा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो व जनताओं सरकार री न्यारी न्यारी योजनावा रो फायदो लेवन री अरज कीनी। गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढमी करौली माई व्यवस्थावा रो जायजो लीनो। सलुम्बर जिला रा नगर परिषद हल्का माई काल शिविर लगाया जावेला जदगे गांवाई हल्का माई मैथुड़ी झल्लारा की माता सुला जय समंदरी पीलादर सेमारी री सड़कड़ी सराड़ा री चावंड और लसाड़िया री सती की चोरी ग्राम पंचायत माए शिविर लगाया जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। बीकानेर जिला रा श्री डूंगरगढ़ माए नेशनल हाईवे नंबर 11 माथे आज एक कार डंपर री फेंट माए आ जावन रे कारण व्या हादसाओं एक ही परिवार रा 6 जना री मौत वेकी। मरण वाला माए 2 महिलावां एक लोग और 3 बच्चा शामिल है जदका एक टावरी घनी जख्मी वेगी जिनरो बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए इलाज चल रियो है। कार माए सवार ए लोग हरियाणा रा माए फतेहाबाद रा रहवासी हा। असम रा जोरहाट माए भारतीय वायुसेना रा AN-32 विमान हादसा माए वीर गति हासिल करन वाला नागौर रा वायु अग्निवीर खेमाराम कुमावत रो आज मारा गांव पांचोटा माए फौजी मानसा गए दाग कर दियो चियो। वानी पार्थिव देह खास विमान जयपुर हवाई अड्डा माथे लाई ची। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जयपुर री सांसद मंजू शर्मा जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ खेमाराम कुमावत री देह माथे फूल चढ़ार वाना श्रद्धा भाव सागे याद कीना। प्रदेश माए बच्चा न दस्त लागणु बचावण हर दस्त तो मंदा भया बच्चा रा इलाज सारू चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर काल स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करियो जावेला। 31 जुलाई ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत 5 साल री उम्र छोटा बच्चा माए डायरिया री रोकथाम टेम सर इलाज साफ सफाई पीवन रा साफ पानी और जन जागरूकता सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जावेला। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि डायरिया आज ही बच्चा रा स्वास्थ्य जुड़ी गंभीर चुनौती है। वह कहो कि उनाला और चौमासा माए बच्चा ने दस्त लागण री बत्ती शंका रहवे है और एड़ो भेवन री सूरत माए इलाज नी मिलन पर मौत रो खतरो ही वह है। स्वास्थ्य विभाग माए बाल स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉ प्रदीप चौधरी बतायो कि अभियान रे दौरान स्वच्छ जल समुचित उपचार डायरिया से बचें हर बार मुद्दा मत है कार्यक्रम रखा जावेला।
2: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है शुद्ध पेयजल का सेवन साफ सफाई स्वच्छता इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है जैसे इसमें UDH हो गया PHED हो गया और पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
1: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए आज महिला और बाल विकास विभाग री ओर अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक राखी ची। इनरो खास मुद्दो पोषण संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका राखी चियो। विभाग री शासन सचिव पूनम बतायो के मीटिंग रे दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यार्थियां रा माए तांसाग केंद्र री आगली कार्य योजना बच्चा री आंगनबाड़ी केंद्र माए रोजीना हाजिरी शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम और पोषण जुड़िया व्यवहार माए बदलाव रे बारा माए चर्चा कीनी। मौसम प्रदेश रा उत्तराद उगनी जिला माए आज ही कठे कठे आंधी बारिश हुई। हनुमानगढ़ माए आज सवारा तेज अंधड़ सागे हुई बरसात सड़का माथे पानी भर गयो। झुंझुनू माए दोपहर पाछे कई ठोणा जोरदार बायरो बाजण सागे बिरखा भी। चूरू और डीग माए आंधी पाछे बारिश हुए वणु मौसम ठंडो वे गयो। राज्य रा कई उगनी जिला माए आंधी बारिश रा समाचार है। दूजी कानी आतुणी हल्का माए हाल ही उमस और गर्मी रो जोर है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब बीकानेर जयपुर

भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आवता 4-5 दिन ताई आंधी बारिश चालता रहवन रा आसार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम रे 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर

इंसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 मत है 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माई खास समाचार एक और फेरु सुन ली रहो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माय खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आज औपचारिक कार्यक्रम री शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माय व्या सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। हर प्रदेश माय बच्चा न दस्तू बचावन और इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन सारू करियो चावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

0: श्रोता हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
2: गांव ग्वाड़ अर खेत खलियानरी बात मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लोसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हर सोमवार सिंजिया 7 बजिया आप सुन सको हो आपरो पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घणे मान सु गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव पावना सर जैसलमेर सु जितेंद्र पंवार गुलाब पंवार तेजपाल नेपाल पंवार पारस पंवार गोविंद पंवार गौतम पंवार गांव मेलाना सु छेलाराम मेघवाल रविन्द्र देवेंद्र अनिता और फूली देवी मेघवाल रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजू है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आना साथी फलोदी सु ईमेल भेजू है सुभाष लेखावत और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची पवार ओ ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु भेजन वाला है दिनेश सोडा रुद्राक्ष सोडा भव्यांश रमनदीप और राम किशोर और कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी मां मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरेठा रमेश सांखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई वगलू राम गहलोत और आना घना सारा साथी पांचला खुर्द सु ईमेल भेजन वाला है दौलाराम बेनीवाल खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सु कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्य सीता देवी मौर्य विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्य हिंसर नागौर सु कल्याणमल प्रभु राम वंशीलाल हेमाराम शोभाराम मौर्य और आना सगला साथी तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

राजस्थानी लोक गीता अर लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। ओ ईमेल आयो है धन्ने की ढाणी तहसील सिंह धरीसू गणेश तरड़ चेतन गिलकी प्रमोद पारसी ममतेश मोहनलाल तरड़ और विकास तरड़ रो मलोट कैंप पंजाब सू माने कागज लिखियो है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया और आना सगला घर वाला। और ईमेल आयो है गांव बीकम कोर सू गौतम परिहार अरविंद परिहार सोहन परिहार आरती दुर्गा मंजू संगीता कुलदीप हंसपाल और ओम प्रकाश परिहार। और ईमेल आयो है गंगा सिंह का खेड़ा भीम सागर सुजानगढ़ सू लिखियो है मदन सिंह राठौड़ और आना सगड़ा घरवाला। गांव खारा बेरा भीमावता सु माने कागज लिखे माना नियमित श्रोता है राजू राम सेन पद्मा सेन और प्रतिज्ञा सेन। आगलो कागज है गांव छापला सु मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी रो। और ईमेल माने कनायो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सु लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी। आगलो ईमेल आयो है भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी गांव खोखरा मारवाड़ जिला पाली सु कागज लिखे है सोहनदास वैष्णव लक्ष्मण दास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी महिमा गुंजन और आना सगला घर। आऊ फलोदी सु माने कागज लिखे बिकम चंद टाटिया संतोष टाटिया मनोज सुरेश खुशबू सपना धनी और भूमि मथानिया सु भगराज वर्मा बेबी वर्मा हनुमान मदन और गोविंद सुथार बिरे सु रतना राम उदेणिया मेहराम उदेणिया गुलाब राम और आनो सगलो परिवार बदवासिया सु पारसमल खटनवालिया अशोक खटनवालिया जयराम और आना सगला साथी। हारडा भारत सिंह सु खरता राम माचरा भैरा राम रेखा राम माचरा उमेदा राम चेतन भोम सिंह और आना सगला साथी। तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना

0: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। आगलो कागद है गांव छापला सु मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी रो। पवनपुरी बीकानेर सु भंवरलाल सोनगरा गीता रानी सोनगरा डॉक्टर सोनू दाईमा सरोज सत्यनारायण दाईमा अखिल मूलचंद सोनगरा सुनीता प्रथमराज हंसराज कृष्णा मुकेश सावित्री अंजलि अनुष्का लक्षिता अमीशा सोनगरा और आशीष जतीन और आना सगला घराला। सादुल शहर सु ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। गांव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह मंजू कंवर सोडा मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर। अमरखेड़ महाराष्ट्र सु ओ कागद लिखियो है अभिजीत ग्वाणकर सरिता ग्वाणकर सिद्धांत प्रिंस और एकांश ग्वाणकर। और ईमेल माने कने आयो है अनारकली बाजार पंजाब सु लिखियो है सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष बेबी गव्या और जयपाली यादव। गांव धुंधाड़ा सु गणेश मेघवाल चंपा मेघवाल मधुबाला विवेक और आना सगड़ा साथी। आगलो कागद है गांव अरनियाली धोरी मीना बाड़मेर सु लिखन आला है फरसाराम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण सूरज शारदा भाग्यश्री हार्दिक खत्री और आनो सगड़ो खत्री परिवार। और कागद आयो है फाजिलका सु लिखियो है भूषण विशाल शालीन खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार। गांव चाड़ी सु उत्तम चंद छाजेड़ राणूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ और आनो सगड़ो परिवार। गांव केलवाद सोजत सु ओ कागद लिखियो है सुरेश मेघवाल मंजू निशा और कृष्णा मेघवाल। कागद आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मिगलानी सीमा शाइना विशाल मिगलानी सुप्रिया अनमोल धर्मपाल महावीर और रमेश मिगलानी रो। तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

अब आर आप सुनियो राजस्थानी लोक गीता रो फरमाइशी कार्यक्रम। अब कार्यक्रम रो बगत हो रियो है पूरो, तो आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दी रहो। राम राम अर नमस्कार।

0: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: फाटक को डाली अड़ी है।
1: अरे राम राम
0: राम राम
1: पगला को
0: धीरे मैं आवरी भाई फाटक को डाली अड़ी है ही कमरी में आवरी।
1: हाँ
0: राखी
1: हाँ ना हाँ
0: अरे राखी तभी थोड़ी मौली होगी
1: सुस्त लग रही है तभी ताज
0: कौटा दूर लपर को लगो उठा नहीं कहूँ है कि हूँ थोड़ो काम धंधो करियो ठाडो पानी पी लियो जो मारो तो मत ही घना दुखे मारे है जो पाड़ा दुखे मार दुखे है भाई
1: आज सुस्त लाग रही है तबियत
0: हाँ भाई
1: सरद गर्म हो गया लागे
0: होगो तो होगो की कोनी हो ही भाई है जो कि ने छोड़े
1: तथा
0: गलती कर हो तो किन की है जो कह नहीं कह आपने तो जा तो मिल ही
1: तो कया थाने कताड़े बार ना निकलो कौम ना जो मैं कर दूं
0: अरे करियोड़ा है भाई जीवड़ो रे कोनी है जीवड़ो को रे कहो यो दिनरा है जो गावड़ी खुल गई अल्लाह रे घने नाई यार करिया जिस पर भाई नावना तो पड़ी गलत कोई हा कोनी
1: सही बात है
0: फिर बता हम की कर करा
1: पछे वो पसीने भरोड़ा पर पी लो सी ठंडो पानी हां
0: फास भाई थोड़ो घूटियो भर लियो जो है
1: हमें
0: हम भूखा रो यार ये मतलब रेशमी बड़ावा रेशमी बड़ा पी ना भाई हां बात है कि भाई लड़ी वे जो करा हो राखी
1: हां नलो
0: तो कौन है जो गीतड़ो गावे के खास है भगवान है कौन है भगवान
1: अरे मैं आज देखी एक मेरे पड़ोस में मैं आपरे पिताजी रे पेंशन वन का कच जिको मैं साइन करा लिया वो सुदूर व्यवहार करे
0: ओ ठोको पिंजो
1: आपरे
0: घणे करे भाई ठोका पिंजो घणे करे कह दियो नहीं
1: कि दूर व्यवहार करे मैं तो साते बुजुर्ग हो गया जणे
0: मैं तो कहूं देखे भाई के कर्मारी सजा भुगतनी पड़े के पूत सपूती वैन पूत पूती वैन पूत है जो कपूती वैन
1: हां तो वो बात के नहीं के पूत कपूत तो क्यों धन साचे पर पूत सपूत तो क्यों धन साचे तो मां पिता
0: अरे मंगड़ो रे कोनी है जाने का तरसना मिटे कोनी लोग है जो किन की करिए
1: सही बात है
0: है जो कह नहीं आज मोटियार है जो डीला रे भूखा देवे आज मजूरी करे कोनी पर कोई नरसा पता करना आवे इन पर क्या बाप गनु की मां गनु धमकान पे मांगे।
1: हाँ।

0: मांगेज का तो मांगे दे तोरा के माता पिता रे टाइम पर
1: बालो के देखे कोई लाज है कोई शर्म ठीक है नहीं बे तो कई है माई थी आप रे के भाई देखो भुगते और औलाद ही भुगते इनु कई है कोई हकरो लागे
0: हां तो मेरे वास्ते के कानून बनाए जो काल विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार है नहीं जागरूकता दिवस है आज
1: है पर देखे भाई बतो लोग है जो कह देखे लोग लाज डरे और हो रहा हां जो पुलिस थाड़े में कटी बिठोड़ जा कोनी और मेहर में बे है जो गुद्दा खावे बैठा रहे आज बात घणी गरम है भाई बड़ा है कि बे आज कल राजी हो जाओ जेको है जो ले ले पद कौन ले बे किया पर थे के क्या नहीं आज कल तो मिन खेजड़ी है पहला ठोके डांगा डांगा पद रोए बंगा बंगा
0: सही है
1: हम जे नहीं आ रहे थे किया पर वा किया कौन भाई सारे हैं
0: वो जी तो इज्जत करनी चाहिए मां पिता जी
1: थोड़ा कुछ है जो क्या नहीं थारे देन किया परा खैर भाई हम जे क्या भाई सर साहब सागर है और कई है जो हंसा है कई दूजा क्या नहीं तरह तरह मिनक है बड़ा है भाई देखे मिनक जात ने एक चीज हो सुनो चाहिए के आप रे बात जियो कई मत
0: बात आप रे जे ने दूसरा वास जेनो चे सब री सेवा करनी चाहिए भाई तो
1: कौन है पंख पंखेरु है दाव डंडो है भाई सेण है आज धरती बात है कई है देखो रूकड़ा लगावड़ा करना है तो परोपकार काम करो तो कह नहीं जीव नो कह के भाई मिन का जून में आन है जो बात है भली हुई और कबीर दास जी कह कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से अमर होए ऐसी करनी कर चलो हमर से जग रोए
0: सही बात है दनित के पर हित सर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अगुवाई
1: हां बोल तो देखे भाई करनाला ही करे
0: दूसरों की सेवा करनाला
1: है जो कह नहीं कहेगा कह नहीं सात समुद्र आगू आन कर ले और नहीं तो घर रो है जो मुंडो ले जा
0: तो आज मैं भी कहूँ आज अमोस है सम्मत अमोस तो कई आज मारी मैंगो से को पी लू आज
1: अरे करा दे भाई सारे अच्छा व्यवस्था कर मिली हूँ तो मन में एक विचार कर बैठो भाई आप रे बात जिये जुगो तो वो कह नहीं की भाई मिन का जून में कड़ो हुए पर दूजा बाबत हो से करे तो वो ने कही है छोड़ो कह मैंने थोड़ी चौकी नजर
0: सही बात है
1: ठीक है नहीं तो थनी शरबती पावान थारे हैंग बेड़ू करावान है बात है और कोई मीठो गीत सुनावे नहीं मारो जी हो रो जाग भाई आप रे बात जियो कम मुतबर
0: दूसरा खातर भी हाँ दूजा जरूर सुनो।

0: वाह भाई ये वाह, अपने लिए जिए तो क्या
1: जिए, दिल जमाने के लिए।
0: हाँ जमाने बाद जिए भाई, देखे अपने देश का कह नहीं के भाई जी का स्वाधीनता सेनानी। हाँ बे जुलम अत्याचार सहन करी और बे है जो कह नहीं आजाद करान किया तो कोई आप रिवाज को जिया नहीं।
1: सही बात है।
0: तो भारत भूमि है जो बड़ी पवन भूमि है। हाँ मैं बताओ कौन दरमियान कौन फोत होया। हाँ
1: आज जन्म पर अभिनेत्री सुरैया रो
0: पुराने टाइम में। हाँ
1: 15 जून 1929
0: हाँ भाई देश की आजादी नहीं मिली उन्हें घना पहला हुआ।
1: हाँ
0: जब काली बोली फिल्म बनती जब मैं है जो जाडे कंटू गाँव था बहुत है था है मैंने सुरैया हा नूर जा हा नूर जा कई है जो देखे गाना घना तो मता मंगेशकर गया।
1: हाँ
0: बाकी है गई है तो सुरैया।

0: आज जन्मदिन है
1: हाँ आज
0: तो भाई
1: जन्मदिन
0: ने
1: है।
0: कहा चो का गीतड़ा में कह नहीं गया गान किया
1: हाँ 40
0: बार मार से कैमरा फेरी जिया
1: हाँ
0: और मैं देखो कि भाई देखो का कह भाई अमर होन किया तो एड़ा कह नहीं फनकार अदाकार वह नहीं मैं कम वे अपना ने किधर तरह गुल पेश करान कोटी कोटी नमन करा बड़े
1: बड़े आज दिन जन्म हुए सज्जाद हुसैन ए भारतीय संगीत रचयिता 15 जून 1973 में जन्म हुए रो और फिल्म संगीतकार और 5 दशकों से भी अधिक समय में वे मुंबई में उद्योग ग्रेड
0: हाँ 50 वर्ष तक है जो फिल्म हम कह नहीं बाजा बजे या अच्छो का बाजा बजे या
1: जड़े ने मेडोलिस्ट री भूमिका निभाई दे मेडोलिस्ट
0: अरे
1: के
0: हाँ
1: एक्टर
0: भाई घना
1: हाँ
0: कह नहीं फिल्मी दुनिया में घना मिल का कोई बजाऊ नाला कोई गाऊ नाला कोई है जो तर तर आपरा काम करने वाला है
1: 22,000 से ज्यादा गीत लिखे है।
0: अरे भाई कह नहीं के जब जिन टाइम कह नहीं बुद्धि रे ढकन खुले नहीं तो हैंग बात वह तो भाई यूं करे नहीं सज्जाद हुसैन साहब रो कोई है जो बाजो बजेड़ो गीत रो होना ही है
1: हाँ सुनो सा।

0: डाकघर ए भी भारतीय गायक रेवड़ा 15 जून 1932 में जन्मड़ो ध्रुपद गायक वास्तरी उस्ताद जैदुद्दीन डाकघर
1: हाँ मोटो है नाम है भाई शास्त्रीय संगीत में है घना कैन जग जवाहा और आपरी कहनी के मेहमत घनी करी खपत घनी करी तो आज अपन देश में कहनी बारो नाम बहुत कहनी आदर और सम्मान रहती
0: मध्य प्रदेश में उन्हें तानसेन सम्मान दियो गये थे
1: अरे कई दही भाई देखे 500 का करीबन सब दही तो आनी अकीदत रा गुल पेश करा कोटि कोटि नमन करा बड़े
0: आज दिन जन्म तारकनाथ दास जीरो 15 जून 1884 में ए भारतीय क्रांतिकारी रेड़ा अंतरराष्ट्रीय मामलों विद्वान रेड़ा शिक्षाविद भी रेड़ा और कई विदेशों में रहे
1: हाँ भाई देश री कह रही आजादी रा सिपाही हाँ और गुरुमती आचार सेन करियो ना अपने आजाद करान किया और गुणी कह रही मिनक हाँ तो आनी कोई नहीं भूल सके पर बते पोर है जिको आने कह रही भाई धोख देवा कोटि कोटि नमन करा मन रेरा भूल चढ़ाऊ बड़े
0: आज दिन जन्म राजेंद्र सिंह जडेजा जीरो वे जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी नाम से जाना जावे और 15 जून 1899 में जन्म बे राज ने स्वतंत्र और बाद भारतीय सेना का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेवड़ा
1: हाँ भाई हाँ देखे फौज में मारो नाम हो सिरे और कबाइलिया टाइम में मुकाबलो करियो देश री कह नी आप जो सरद है उनो है जो कह नी बजट करी तो एड़ा बिरला मिनका कोई नहीं भूल सके वे भारत देश रा महान सपूत है कोटि कोटि नमन करा पर बाते बहुत ढोक देवा है भाई क्या जन्म रेवड़ा भड़क कोई वह तो ठीक है सुरी यालो कोई गीत होना ही कोई
0: सुनो सा
1: हाँ होना है भाई सुरी यालो गीत रा पूरा ना है मनी है करा
0: सुनो जरूर

0: वाह भाई ये बात नहीं कर दिया। मैं बड़े बड़े फर्मा हुआ मैं
1: बड़े आज श्रीमन नारायण जी अग्रवाल जी रो जन्म हुआ आज दिन वे भारतीय युवा कांग्रेस में कार्यकारी समिति रे सदस्य रोड़ा और बाद में वे उनसे बड़े में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लियो था।
0: हाँ उन टाइम लेके गांधी जी यहाँ करिया भाई और कहने

0: माड़ा। और भाई देखे तारे खासा ऊंचा आएगा राखी और खासा कामड़े ही बाकी है। कल देखो आज बढ़िया कह नहीं आप जिम जिम लो दिन के आला खेत में थोड़ो कह नहीं बाढ़ काटो करा कोई हुड़ पाड़ी करा और कोई है जो कह नहीं जंदर के आला ट्रैक्टर मार बेपरान
1: बिल्कुल
0: ठीक है नहीं।
1: आओ।
0: तो हमें देखे तारा खासा ऊंचा आएगा है अंदाजी बड़गो है प्रोग्राम रो टाइम ही होगो पूरा तो भाई सेना लेवा ही
1: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। बेटा फिल्म से गीतकार है समीर, संगीतकार दिलीप सेन समीर सेन, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तेजाब से। बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत को गाया नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों ने। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से। बोल लिखे हैं हंसत भोपाली ने, संगीत राम लक्ष्मण का है और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और बाबला मेहता ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म रुदाली से ये गीत। गीतकार है गुलजार, संगीतकार भूपेन हजारिका, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल।

श्रोताओं, समीर का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म जिद्दी से। इसकी धुन बनाई दिलीप सेन और समीर सेन ने और इस गीत को गाया हरिहरन और KS चित्रा ने। आइए कार्यक्रम फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है क्रिमिनल, बोल लिखे हैं इंदीवर ने, संगीत है MM करीम का और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और साथियों ने।

0: श्रोताओं, क्रिमिनल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से

0: जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
2: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है।

0: आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार

रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश

0: प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
3: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
1: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
4: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group

0: श्रोताओं, चंदन दास की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं निकाह फिल्म से। गीतकार है हसरत मोहानी, संगीतकार है रवि और इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने।
1: अभी अलविदा मत कहो।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सावन को आने दो। इससे ये गीत, गीतकार है गौहर कानपुरी, संगीतकार है राज कमल, और इस गीत को गाया है जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। चितचोर फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसको गाया है येसुदास ने। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन।

जाने गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल। श्रोताओं, रात के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं, जिनमें सबसे पहली भेंट वार्ता है हैंडबॉल खिलाड़ी एवं कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रविकेश मीणा की बातचीत। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में श्याम सिंह राजावत जी, निवासी न्यू जवार कॉलोनी ठींगला सवाई माधोपुर से। दूसरे मेहमान के रूप में पधारे हैं हमारे पास खिलाड़ी चंद्रवीर सिंह राजावत जी, निवासी बाल मंदिर सवाई माधोपुर से। कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर।
1: तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्याम सिंह राजावत जी से। श्याम सिंह जी, आपकी खेल जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है?
2: सर, जब मैं 12 साल का था तब से हैंडबॉल खेलना शुरू किया
1: जी।
2: स्टार्टिंग से सब जूनियर टूर्नामेंट खेले, कई सारी जूनियर भी खेले, हम लगभग 30 से 35 चैंपियनशिप खेली मैंने अभी तक। ठीक है, हम खिलाड़ी के साथ साथ कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को, तो हम छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, वो भी हर साल यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मेडल ला रहे हैं, अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं और निरंतर प्रतिभाएं बाहर निकल रही है सवाई माधोपुर से।
1: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपकी शुरुआत कब और कहाँ से आरंभ किया आपने खेलना?
3: सभी को नमस्कार। खेलने का तो यह है साहब, जब बचपन में जब एक बार गलियों में कॉलोनियों में खेलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वहीं कोई किसी को देखते हैं और उनको अपना आइडियल बनाते हैं, ऐसे समय पे कुछ सलाह देने वाले मिल जाते हैं, कोचेज मिल जाते हैं, तो वो खेल को निखारते हैं। तो अमूमन छठी सातवीं आठवीं क्लास से जो टीचर थे हमारे शिवदयाल जी मार साहब, मनटाउन स्कूल में जो पीटीआई थे, उन्होंने मुझे पहली बार देखा और मेरे को टीम में लिया
1: जी।
3: उसके बाद ये सफर चलता रहा, जो आज तक चल रहा है।
1: बिल्कुल। अच्छा, हैंडबॉल आने से पहले आपको कहीं से प्रेरणा मिली श्याम सिंह राजावत जी?
2: सर, स्टार्टिंग जब सवाई माधोपुर में हम खेलना शुरू किया था तब चंद्रवीर सर की कोच थे हैंडबॉल के,
1: आज गुरु चेला दोनों सर।
2: उन्होंने स्टार्ट किया था, तब से हम आज तक हैंडबॉल खेल रहे हैं और खिला भी रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान लेवल पे बात करें तो आपके प्रियदीप सिंह जी है जो अभी काउंसिल में कोच लगे हुए हैंडबॉल के, उन्होंने भी काफी सहयोग मिला, उनसे सीखने को काफी कुछ मिला। और सबसे पहले उनकी आज काउंसिल में वो कोच लगे हुए, सबसे पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुरी थी।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने यहाँ 3-4 साल तकरीबन रहे, काफी कुछ बच्चों को सिखाया, ग्राउंड चलाया, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपके गुरु कौन है आरंभिक, और इस खेल में कैसे आपकी रुचि बढ़ी है
3: खेल में? जब मैं कॉलेज में था, वहाँ कॉलेज में जब ग्रेजुएशन में था, तब तो वहाँ हमारे सर थे और दोस्त लोग थे जो उन्होंने कहा हैंडबॉल में बुलाया। बेसिकली मैं खेलता फुटबॉल था और उन्होंने मुझे बुलाया हैंडबॉल में। तो हैंडबॉल की स्पीड और हैंडबॉल का मतलब एक कह सकते हो बड़ा फास्ट गेम है
1: जी,
3: जो उसको देख के मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और फिर मैंने कहा यार खेलते हैं, खेलने लगे। फिर उसमें बूस्टअप कर दिया कोच प्रियदीप सिंह जी ने, जिनकी पहली पोस्टिंग 2011-12 में राजस्थान काउंसिल में कोच की भर्ती, उसमें वो चयन हुआ उनका, उनकी पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर मिली उनको
1: जी।
3: तो वो उनको देख के, उनका चार्म और वो खुद इतना अच्छा लेवल के प्लेयर थे, तो उनको देख के हम भी सोचा कि ऐसा तो बनी जाए, ऐसा नहीं तो कुछ तो बनी सही इनके जैसा। तो वहां पे फिर हम इस गेम की तरफ मूव करने लग गए।
1: बिल्कुल, सफर तो चलता रहा। चंद्रवीर जी, आज हम देखते हैं कि आपका बचपन से लेकर अब तक का जो भी मैच था, उनमें सबसे यादगार कोई पल अगर आपका रहा हो तो वो थोड़ा सा हमें बताएं।
2: हाल ही में सर सीनियर चैंपियनशिप खेलने गए थे हुगली वेस्ट बंगाल
1: जी,
2: वहां सर क्वार्टर फाइनल एक मैच चल रहा था हमारा जो यूपी वर्सेस राजस्थान का चल रहा था। वो मैच में एक एक सेकंड सांसें रोकने वाला मैच था। एक यूपी के कोच थे तोहित सर, जब लास्ट 3 सेकंड बच रहे थे तब तोहित सर ने टाइम आउट लेके
1: जी
2: और एक गोल राजस्थान पे करवा के

0: मैच बराबर कर दिया। तो मतलब एक वो बेहतरीन लेवल की कोचिंग देखने को मिली, बेहतरीन लेवल का मैच देखने को मिला, मतलब बैक टू बैक नेक टू नेक फाइट चल रही थी लास्ट तक। फिर 3 सेकंड खत्म होने के बाद मैच टाई हो गया, फिर 2-2 सेकंड का वापस टाइम दिया एक्स्ट्रा टाइम, उसमें 2 गोल की लीड करके राजस्थान जीती। तो सर मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो था।
1: अच्छा अनुभव आप लेके बैठे हैं। अच्छा चंद्रवीर जी, आप बताएंगे कि अब जो एक सफल एंड बॉल के खिलाड़ी बनने के लिए मतलब बालकों में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए?
2: बिल्कुल साहब, सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपको पंक्चुअल
1: समय का,
2: बिल्कुल आप पंक्चुअल रहे ग्राउंड पे, और डेडिकेशन आपका होना चाहिए और खेल के प्रति प्यार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: जब तक आप उस चीज से प्यार नहीं करोगे वो आपको चीज नहीं मिलेगी,
1: हासिल ही नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल, और कोच आपके भले के लिए ही बोलता है, आप उसको अदरवाइज लेते। जिसने कोच की बात को आंख बंद करके फॉलो किया वो बच्चा रुक ही नहीं सकता। ऐसे 50 उदाहरण हैं, जो माधोपुर के भी 10-20 उदाहरण हैं और बाहर के भी हैं, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैंडबॉल खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, सिर्फ इसलिए कोच की बात को उन्होंने फॉलो किया। कोच हमेशा बच्चे को सही सलाह और सही गाइडेंस ही देता है।
1: बिल्कुल सही है श्याम सिंह राजावत जी, आप बताएं कि मैच के पहले आप अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी किस रूप में करते हैं?
0: सर मैच से पहले हम मेंटली फिट होना जरूरी है, प्रेशर में मैच खेलेंगे तो खेल ही नहीं पाएगा खिलाड़ी, तो पहले मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली। उसके बाद ठीक है, मैच के पहले हम थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और वार्म अपिंग करते हैं, तो उससे टीम के साथ एक साथ टीम भावना के साथ खेलते हैं, तब जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे मैच में।
1: राजाव जी, आप राष्ट्रीय स्तर के और मेडलिस्ट खिलाड़ी है, तो आप मेरे को ये बताएं कि जो आपको जो प्रेरणा दी है वो किस किस टीम के माध्यम से मिली है?
0: प्रेरणा सर हमको हमारे एचआई के फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी है तेजरा सिंह जी, उन्होंने राजस्थान लेवल पे हैंडबॉल गेम को बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया है सर, और अभी भी कर ही रहे, और उन्हीं के साथ हमारे जो राजस्थान सेक्रेटरी है यश प्रताप सिंह जी, वो भी काफी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान के कई बच्चों का भला किया और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग हर जगह, और हर साल इसी वजह से मेडल लेके आ रहे हैं बच्चे।
1: अच्छा, हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को समझाएं।
0: हैंडबॉल में सर टीम तो 16 खिलाड़ियों की होती है, बाकी मैच में 7 खिलाड़ी खेलते हैं
1: जी।
0: राइट पोजीशन की बात करें तो एक गोलकीपर है, लेफ्ट बैक, राइट बैक और लेफ्ट विंग, राइट विंग और पिवट प्लेयर, ऐसे करके 7 पोजीशन होती है, और बहुत फास्ट मैच चलता है सर, हर पोजीशन का अलग अलग अपनी भूमिका रहती है।
1: राम सिंह जी, बात करें अपन जो आपके खेल जीवन में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: खिलाड़ियों का सर संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो सभी के होता है, हर की उम्र को, बाकी हमारे हैंडबॉल में ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग पॉपुलरिटी कम है, ठीक है, क्रिकेट जैसा पॉपुलर गेम है नहीं, तो गवर्नमेंट से जो भी सहायता सपोर्ट या और भी सोशल तो वो मिल नहीं पाती है सर, एक्चुअली फाइनेंशियली काफी संघर्ष करना पड़ता है हर एक स्पोर्ट्समैन को
1: जी।
0: जैसे कई क्रिकेट वाले हैं उनमें पैसा है सर, वहां तो ठीक है सब जगह सपोर्ट करती है, बाकी निचले स्तर पे खिलाड़ी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है, तो कहीं टूर्नामेंट आयोजित करवाना, टूर्नामेंट में जाना आना, तो कई चीजें जो दिक्कत करती है, आज भी वो चीजें बच्चों के साथ देखने को मिलती है
1: जी। जी चंद्रवीर जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एक सफल खिलाड़ी होता है एक शारीरिक ताकत के साथ और मानसिक संतुलन के साथ, तो इनका खिलाड़ियों का खान पान कैसा होना चाहिए अभी से, अगर बचपन से बच्चों को हम ये चाहें कि ये खेल में जाए, हैंडबॉल में जाए, ये किसी भी खेल में जा सके, तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए?
2: सर ये हैंडबॉल गेम क्या बड़ा रफ एंड टफ गेम है, और ये टोटल 100% बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है
1: जी।
2: इसमें आपस में आपको रश करना ही पड़ेगा अपोनेंट के साथ
1: जी।
2: खान पीने का इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल है, आपको देसी खाना
1: जी,
2: दूध दही छाछ घी, क्यों हैंडबॉल में हनुमानगढ़ गंगानगर या ग्रामीण परिवेश के बच्चे सबसे हैंडबॉल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं
1: जी।
2: जैसे करौली महावीर जी के बच्चे,
1: क्या बात है,
2: वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको खान पान उनको अच्छा मिल रहा है गांव के अंदर, और शुद्ध और देसी मिल रहा है, दूध भी खा रहे हैं, छाछ भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, बढ़िया घर पे खा रहे हैं, बाहर का कोई मिलावट ही नहीं खा रहे, इसलिए उनका बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर और ये और पावर

0: स्ट्रेंथ
1: जी, जी
0: फिर वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे तो उनका स्ट्रेंथ डेवलप होता है। खाने पीने के बाद अगर आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन ये अपने आप डेवलप हो जाता है।
1: बिल्कुल। अच्छा श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो टीम भावना का हैंडबॉल में कितना महत्व होता है?
2: टीम भावना, कोऑर्डिनेशन जरूरी है सर। बिना कोऑर्डिनेशन के हैंडबॉल मैच क्या, टीम मैच है। तब तक हर प्लेयर संघर्ष नहीं करेगा तो टीम जीत नहीं पाएगी।
1: चंद्रवीर जी, सवाई माधोपुर जिले में देखें तो अभी जो सवाई माधोपुर की जो प्रतिभाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं कि तरासा है सवाई माधोपुर जिले ने।
0: राजस्थान हैंडबॉल की तरफ से, जिला हैंडबॉल संघ की तरफ से जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने भाग लिया, उसमें छवि श्री चौहान है जो अभी गुड़गांव में डॉक्टर है, और तेजस्वनी चुंडावत है जो खुद अभी केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत है यहाँ सवाई माधोपुर, अरुण यादव है जो अभी जयपुर में है आरएस की तैयारी कर रहे हैं, हितेंद्र सिंह है ये खुद आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ये जूनियर मेडलिस्ट है ये
1: जी।
0: तेजस्वनी चुंडावत भी सिल्वर नहीं प्लेइंग है और हितेंद्र सिंह जूनियर मेडलिस्ट है, एरंता है, ज्योति मीना है, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, दो बच्चे रावल की
1: जी।
0: सीमा मीना है जो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है
1: जी।
0: और भव्य राजावत है ये भी स्कूल नेशनल है, आकांक्षा सैनी ये बच्ची भी स्कूल ओपन नेशनल है, अजय सैनी ये बच्चा अभी रिसेंटली वेस्ट जोन में इसकी टीम ने सिल्वर मेडल, फिर इसका इनका ऑल इंडिया के लिए चयन हुआ तो ऑल इंडिया में भी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो 2025-26-27 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया
1: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो आप लगातार काम कर रहे हैं तो बच्चों की प्रतिभाएं निखरना एक आम और स्वाभाविक बात है। चंद्रवीर सिंह जी, युवा खिलाड़ियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: सर, युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट
1: जी,
0: ये और आपकी सुबह उठना है तो उठना है, ग्राउंड जाना है तो जाना है, ये चीज जब तक ये भावना खिलाड़ी में नहीं आई, पंक्चुअलिटी मेन चीज, पंक्चुअलिटी
1: जी,
0: आप सही टाइम पे सही काम करें
1: जी,
0: टाइम से ग्राउंड जाओ, टाइम से ग्राउंड आओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से पढ़ो भी सही
1: जी। बिल्कुल, पढ़ाई भी जरूरी है खेल के साथ साथ। अच्छा बात करें श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो भविष्य में आपके खेल संबंधी क्या लक्ष्य हैं?
2: सर, खेल संबंधी भविष्य में यही लक्ष्य है कि हमारे जिले के जो बच्चे हैं वो हैंडबॉल गेम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दें और जिले का और देश का नाम रोशन करें, यही लक्ष्य आगे हम बना के चल रहे हैं और अभी भी निरंतर बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं निरंतर वो कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है उनको।
1: बिल्कुल। चंद्रवीर जी, नए जो बच्चे खेलने के उत्सुक होते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से?
0: नए बच्चों को संदेश यही है कि आप मोबाइल छोड़ें, टीवी छोड़ें और घर का बिस्तर छोड़ें, टाइम से उठें, ग्राउंड आएं, मेहनत करें, जरूरी नहीं है किसी का साथ हो, टाइम पास नहीं करें, सीरियसली मेहनत करना है तो ग्राउंड आएं, बाकी टाइम पास करने के लिए तो आपका मोबाइल भी है और टीवी भी रखा है घर।
1: बिल्कुल। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी दी, कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे हैंडबॉल खिलाड़ी और कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रवि केश मीणा की बातचीत। यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान था। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ केंद्र का अंशदान है।
5: श्रोताओं नमस्कार। आज फिटनेस और हेल्थ के बारे में जो बारीकियां हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आमिर खान। आप फिटनेस कोच हैं, नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन आपने फिटनेस में जो है हासिल किया हुआ है और आप बॉडी बिल्डिंग भी आपने लोगों को सिखाई है या उनके साथ काम किया है और ऐसा कह सकते हैं कि आप पिछले 10 सालों से इसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक फिटनेस संस्था भी अपनी चलाते हैं और इस क्षेत्र में लोगों को काफी मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आमिर खान, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: आमिर जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिटनेस जो है, फिटनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीज है फिटनेस?
6: सर देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप जिम जाते हैं, घर पे कोई वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक फिटनेस अपने वर्कआउट में ला सकते हैं ताकि आपका शरीर एक फिट रहे, ना कि आप अगर कोई भी रोजमर्रा का काम कर रहे हैं तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो रोजमर्रा के काम है उसमें कोई भी अड़चन ना आए।
5: सामान्य लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जैसे किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाती है लोगों की, सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त हाफ जाना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द होना, ये सब क्या अपने फिटनेस लेवल को दर्शाते हैं?
6: बिल्कुल सर, अगर आपकी बॉडी में अगर फैट परसेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो गया है तो आपका फिटनेस लेवल आज के टाइम के

0: ये बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि आपकी बॉडी में आपके फैट ने इतनी ज्यादा मात्रा घेर कर ली है कि आपके बॉडी का जो वेन्स है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, के कारण जो अपना जो हार्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता और अपना बीपी भी प्रॉब्लम काफी क्रिएट करता है। और आजकल आप देख रहे हो कि काफी हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं लोगों को, आज के टाइम में बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग खान पीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण ये काफी प्रॉब्लम्स आती है। और अपनी इस प्रॉब्लम से आपको निवारण करने के लिए आपको फिटनेस ज्वाइन करनी चाहिए।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने नाम लिया अभी कि हमारी बॉडी में जो है फैट बढ़ जाता है, तो फैट का जो आइडियल परसेंटेज है वो बॉडी में कितना होना चाहिए?
0: देखिए सर, एक जनरल जो आइडिया होता है वो 11-15% के बीच में अपना बॉडी फैट होना चाहिए।
1: तो ये मेल और फीमेल के लिए एक जैसा है?
0: फीमेल के लिए आप मान सकते हैं कि 18% तक आप बॉडी फैट उनका रख सकते हैं।
1: तो आज जो हम देख रहे हैं जनरल जो लाइफस्टाइल है हमारा, तो वो तो मेरे हिसाब से 20% से ऊपर सबका फैट आपको देखने को मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आज अगर आप देखेंगे एक अनुपात निकालेंगे तो 100 में से सिर्फ 4 से 5 लोग ही एक जो आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है 11 से 15 उसके अंदर रहते हैं, बाकी 95% जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी बॉडी की जो संरचना है वो बिल्कुल खराब कर चुके हैं, क्योंकि खान पीन उन्होंने अपना ऐसा कर लिया है कि हर चीज में तेल डालना है, बाहर का खाना, फास्ट फूड इतना ज्यादा हो गया है आज के टाइम में कि वो बॉडी की संरचना को पूरा खराब कर रहा है। बॉडी के अंदर फैट की मात्रा 20-25% या 30% भी आने चली वो भी आज के टाइम में कम है।
1: तो ये जो फैट जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के साथ कोई कनेक्शन?
0: जी बिल्कुल सर, अगर आपकी बॉडी में फैट की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि 25% या 30% से भी अगर ज्यादा हो गई है, तो अपना क्या होता है, जो अपने फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, वो अपने हार्ट और अपने ब्लड जो सर्कुलेशन जो संरचना है वो सब तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है, जब भी अपना हार्ट पंप करता है तो अपनी वेन्स के अंदर जब ब्लड निकलता है
1: जी,
0: ठीक है, तो उसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है अपने फैट के बढ़ने से, जिसके कारण क्या जब भी अपना हार्ट पंप करेगा तो उसको प्रॉपर मात्रा में ब्लड ना मिलने के कारण, ठीक है, ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है।
1: जी सही कहा आपने कि जब फैट अगर बॉडी में बढ़ेगा तो वो अंततः हमारी जो नाड़ियां हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें जाकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमेगा और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो उसके देखने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: हम आपसे जो मुख्य है हमारा टॉपिक है आज का फिटनेस पे बात करना चाहेंगे कि अगर किसी को फिटनेस अपनी अच्छी रखनी है, हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो या फिर हम कहें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, तो कहां से वो शुरू करे फिटनेस?
0: देखिए सर, मैं आपको बताता हूं, एक कोई भी इंसान है वो कम से कम 14-15 साल का एक होना चाहिए बच्चा, ठीक है, तब से वो अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल को स्टार्ट कर सकता है। अब फिटनेस लाइफस्टाइल को स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना ही अनिवार्य है। अगर आपके आसपास अगर आपके पास जिम है कि जहाँ पे आप जा सकते हो तो बिल्कुल आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप अपना वर्कआउट भी घर पे कर सकते हो, ठीक है।
1: घर पर क्या वर्कआउट किया जा सकता है?
0: बिल्कुल सर, देखिए घर पे वर्कआउट करना बहुत ही आसान है। अगर आप सुबह भी पूरे 24 घंटे में से अगर 1 घंटा अपनी बॉडी को दे सकते हैं तो आप अपने घर पे भी वर्कआउट कीजिए, जिसके लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं होती।
1: तो वो तो हम लोग वॉकिंग कर ही लेते हैं।
0: नहीं सर, देखिए वॉकिंग करने से और फिटनेस का ध्यान रखने से ये पूरा अलग है, क्योंकि वॉकिंग में क्या होता है, जस्ट अपने जो जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं और अपने पाचन क्रिया ही वही अच्छी रहती है। आपके फिटनेस लाइफस्टाइल को आप अच्छा नहीं कर सकते वॉकिंग करने से, ना ही अपनी जो बॉडी कंडीशन है वो चेंज कर पाओगे। बस ये है कि हाँ, जब भी आप वॉकिंग करते हो तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो सही रहेगी, क्योंकि अंततः आप थोड़ी बहुत अपनी बॉडी की कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन अपनी फिटनेस को अच्छा रखने के लिए आप,
1: लेकिन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो वॉकिंग से सुधरती है ये भी तो कहा जाता है।
0: नहीं सर, देखिए अगर आपको बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको फिटनेस के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी 5,000 या 7,000 स्टेप चल पाओगे, आप 20-25,000 आप स्टेप नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है उसमें।
1: ठीक है, हम बात करेंगे, आपने बताया घर पर अगर कोई वर्कआउट करना चाहता है तो अगर कोई इक्विपमेंट्स के साथ करना चाहे और बिना इक्विपमेंट के करना चाहे, हम सबसे पहले यही जानेंगे अगर कोई आदमी बिना इक्विपमेंट के घर पर ही शुरू करना चाह रहा है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहूंगा, वॉकिंग तो वो पहले से कर रहा है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहता है, तो वो कैसे शुरू करे?
0: देखिए सर, मैं आपको बेसिक 2-3 एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे कि आप पुशअप्स लगा सकते हो घर पे,
1: ठीक है,
0: ठीक है, आप स्क्वाट्स लगा सकते हो, आप कोर एरिया को कम करने के लिए आप क्रंचेस लगा सकते हो, लेग रेजेस लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो और प्लैंक लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको अच्छी फिटनेस रखने के लिए आपको जिम जाना अनिवार्य है, या आप अपने घर में कुछ इक्विपमेंट्स मंगा लीजिए जिससे आप अपनी फिटनेस को अच्छा रख पाए।
1: बेसिक इक्विपमेंट्स?
0: बिल्कुल सर, बेसिक इक्विपमेंट्स में आपको रखने के लिए आप एटलीस्ट 2.5 के 2 डंबल ले सकते हो, 5 केजी के 2 डंबल ले सकते हो और एक रेजिस्टेंट बैंड भी अपने यूज कर सकते हो
1: जी,
0: जिसमें आप अपना जो बॉडी का ऑल ओवर वर्कआउट है वो आप पूरा कर पाओगे।
1: तो जो डंबल है उनसे आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, कि डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड से कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक बिगिनर जो करना चाहे वो घर पर एक्सरसाइज शुरू कर पाए?
0: देखिए, अगर आप कोई भी वर्कआउट अपना प्लान घर पे चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले 2.5 के डंबल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आपने शोल्डर की कोई एक्सरसाइज करनी है तो शोल्डर प्रेस लगा सकते हो, साइड रेजेस लगा सकते हो, फ्रंट रेजेस लगा सकते हो और आप ट्रैप्स लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका शोल्डर का वर्कआउट हो गया। अगर आपको चेस्ट का वर्कआउट करना है तो आप सिंपल जमीन पे लेट जाइए। ठीक है, तो आप सिंपल जमीन पे लेट के 5-5 kg के डंबल उठा के देन चेस्ट प्रेस लगाइए, देन डंबल फ्लाई भी आप वहां पे कर

0: सकते हैं और पुशअप्स भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल बेसिक जो आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं है, अगर आपके माइंड में है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, मेरे को बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी बनानी है, तो उसके लिए आपको जिम में जाना अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ दो डंबल से आप अपनी ऑल ओवर जो मसल बिल्डिंग को आप इतना इनहेंस नहीं कर पाओगे।
1: जैसे आपने अभी जो डंबल की एक्सरसाइजेस बताए वो तो हमारे जो अपर बॉडी है उसमें आप बैक हो गया या फिर शोल्डर और आर्म्स जो है हमारे उनको मजबूत हम कर रहे हैं, बाकी जो लोअर बॉडी पार्ट है जैसे लेग्स है हमारे या फिर हमारी जो कमर है
0: लोअर बैक
1: है या फिर अपर बैक है, इनको मजबूत करने के लिए भी एक्सरसाइज है।
0: जी बिल्कुल, आप अपर बैक को मजबूत करने के लिए आप डेडलिफ्ट जैसे वर्कआउट कर सकते हैं,
1: घर पे
0: कर सकते हैं दो डंबल से भी। ऐसा नहीं है कि डेडलिफ्ट के लिए आपको हैवी डंबल्स की जरूरत पड़ती है। आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आप उनका रेप्स ज्यादा बढ़ा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको 5 से 6 रेप लगाने, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप रेप्स भी ज्यादा लगा सकते हैं, 25 से 30 रेप्स लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक फटीग महसूस होगा उस लेवल पे और उस टाइम में आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो थोड़ी बहुत बनने लग जाएगी। लेकिन आप एक टाइम में आपको फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए आप थोड़े और हैवी डंबल घर पे मंगवा सकते हो, आपकी जो फिटनेस लाइफस्टाइल है वो और अच्छी हो जाएगी। जिसमें अगर अपन कुछ एक्सरसाइज और ऐड करें, जिसमें अपन स्क्वाट्स ऐड कर सकते हैं लेग्स के लिए, लंजेस लगा सकते हैं, सुमो स्क्वाट्स लगा सकते हैं और हिप थ्रस्ट भी लगा सकते हैं, ये आपकी लोअर बॉडी को मजबूत करेगा।
1: आमिर जी, अब हम बात करेंगे बिगिनर से थोड़ा ऊपर, जो आदमी, जो भी महिला है या फिर पुरुष है जो जिम जाना चाहता है, अगर वो जिम जा रहा है तो वो किन बातों का ख्याल रखे, क्या कोई भी व्यक्ति जिम जा सकता है?
0: देखिए, हर कोई व्यक्ति जिम जा सकता है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये हो कि उसका कार्डियोवास्कुलर इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कि वो थोड़ा भी अगर सांस
1: ले, अगर एक बार पहले डॉक्टर को दिखा ले, अगर कोई पहले शिशु है तो
0: जी अगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं
1: जी,
0: तो वो पहले स्टार्टिंग यही करे कि वो अपना घर पे वर्कआउट करे एक अच्छे कोच के अंडर में, ठीक है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम कंडीशन आ रखी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो दवाइयां चल रही है, उनसे पहले राहत पाए, उसके बाद में वो एक जिम ज्वाइन करे। और जिम जाने से पहले एक खास दिन का ध्यान रखें, जो भी आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ध्यान नहीं रखते, वो जीन्स में आ जाते हैं, वो स्लीपर्स के अंदर आ जाते हैं, इनमें बिल्कुल वर्कआउट ना करें। आप एक जिम में जाने के लिए प्रॉपर लोअर टी शर्ट और अपना शूज और एक वाटर बॉटल और एक टॉवल वो अपना साथ रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर कोई इंसान अपना पसीना बहाता है जिससे अपने को काफी बीमारियां भी अपने आ सकती है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम काफी क्रिएट हो सकती है, जिसके लिए आप अपना खुद का टॉवल यूज करें। जो भी आप बेंच यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी डंबल कर रहे हो, तो उसको अपने स्वेट से दूर रखें,
1: जगह को साफ रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्र इसमें मैटर करती है, जैसे आपने पहले बताया था कि 14-15 साल से ऊपर का, किस उम्र तक के लोग हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो 40 या 50 की उम्र को पार कर जाते हैं वो जनरली ये सोचते हैं कि हमें तो बस अब इन जो हमारी बॉडी पेन कर रही है उसके साथ ही जीना है और धीरे धीरे ऐसे ही मर जाना है।
0: देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, 15 साल के बाद में आप जिम ज्वाइन कीजिए और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपना जिम के लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जिसे आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आप शारीरिक तौर पे, जैसे अभी आप देखते हो कि 50 से 60 साल के बाद में लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द है, चलने के लिए उनको सहारा चाहिए। और जनरली आप देखो 50 साल वाले लोगों के ये काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान नहीं रखते।
1: क्योंकि ऐसा होता है कि 30 की उम्र के बाद में हमारा जो मसल्स है वो घटने लगते हैं बॉडी में, और उनको बनाए रखने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट, ये दोनों जो है बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: डाइट की हम बात करेंगे कि जो जिम जा रहा है वो जिम जाने से पहले क्या खा के जाए।
0: जिम जाने से पहले आप सिंपल एक बनाना खा सकते हैं, आधा घंटा पहले
1: जी,
0: एक बनाना या एक एप्पल। और जिम जाने से पहले अगर आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी का, मिल्क वाली नहीं, ओनली ब्लैक कॉफी, एक कप गर्म पानी के अंदर थोड़ी कॉफी मिला के आप पी सकते हैं, कि वो क्या करेगा, आपको जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे आपको वर्कआउट की तरह प्रेरित करेगा ताकि आप वर्कआउट और अच्छा कर पाओ। और बनाना क्या करता है, अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप जब भी जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट करें, तो आपकी बॉडी में बिल्कुल वीकनेस ना आए, आप वर्कआउट अच्छा कर पाए और 1.5 घंटे तक आप वर्कआउट अपना कर पाए।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लोगों को लगता है कि जिम जाते ही उनको सबसे पहले वो जो डिब्बे हैं वो शुरू करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी को सामान्य फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए काम करना है तो वो घर का बना खाना, साधारण जो हमारा भोजन है उसके साथ भी काम कर सकते हैं। हम आपसे आमिर ये पूछना चाहेंगे कि कितने समय तक जो वर्कआउट है जिम के अंदर वो करना चाहिए।
0: देखिए, एज ए बिगिनर के लिए आप, मैं बताता हूँ, कोई भी बिगिनर पर्सन है जो वर्कआउट करना चाहता है वो एटलीस्ट 40 से 45 मिनट या 1 घंटा माने चलिए उनको वर्कआउट करना चाहिए। जिम जाते ही सबसे पहले उनको वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए अपनी बॉडी की प्रॉपर, ताकि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें आपकी बॉडी में कोई भी क्रैम्प्स या मसल पेन इश्यू ना आए, ठीक है, आप अपना वर्कआउट अच्छा करें। देन वर्कआउट खत्म करने के बाद में लास्ट में स्ट्रेचिंग करें ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ में आपने जो बिल्डअप किया है, आपने मसल को फटीक किया है, वो रिलैक्स हो जाए और आपकी जो रक्त प्रवाह है, ठीक है, वो वापस नॉर्मल हो जाए सुचारू रूप से।
1: अगर हमने ग्रुप जो है मसल्स का, जैसे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स है, उनको कर लिया, तो उनको रिकवर होने के लिए कितने घंटे का समय लगता है?
0: देखिए, अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी
1: जी,
0: ठीक है, आप अपना खान पीन का पूरा ध्यान रखते हैं, हर 2 से 2.5 घंटे बाद अपनी मील ले रहे हैं, प्रोटीन का लेवल आप प्रॉपर रख रहे हैं बॉडी के अंदर, तो आप मान चलिए 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है उस मसल। अगर आपकी बॉडी

0: और नहीं कर पा रही। अगर आपका वर्कआउट करने के बाद में 2 दिन बाद भी उस मसल्स के अंदर सोरनेस है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपनी बॉडी के अंदर उत्तम मात्रा के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे, ठीक है। आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर एक ही जो बॉडी का मसल पार्ट ग्रुप है, जैसे चेस्ट है या बैक है, शोल्डर, कोई भी मसल पार्ट है, उसको एक ही कीजिए। जैसे उसकी 4 से 5 एक्सरसाइज इनफ होती है, उसको ही कीजिए, ताकि आपकी जो रिकवरी मील्स है वो उसको एक मसल को अच्छे से रिकवर कर सके, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वो पेन ना बढ़े।
1: एक ग्रुप आपने हमें बताया, अन्य कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो मसल्स के?
0: जैसे चेस्ट हो गया, आपने चेस्ट हो गया, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स हो गए, फोरआर्म्स हो गए, अपने लेग्स हो गए, ये सब अलग अलग पार्ट्स। और इनको करने के लिए मैं आपको जनरल चीज बताता हूँ, जैसे कोई भी बिगिनर है उसको अगर वर्कआउट करना है, तो जैसे मंडे को वो चेस्ट लगा सकता है, ट्यूजडे को वो अपना बैक का वर्कआउट कर सकता है,
1: ठीक है,
0: और अपने वेडनेसडे को अपना लेग का वर्कआउट कर सकता है। उसके जस्ट नेक्स्ट डे जैसे अपने थर्सडे को अपना बाइसेप ट्राइसेप लगा सकता है, फ्राइडे को अपना शोल्डर का वर्कआउट कर सकता है, और सैटरडे को वापिस लेग्स का वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि लेग्स एक ऐसा पार्ट है कि वो काफी बड़ा मसल ग्रुप है, वो जल्दी से गेन नहीं होता, और उस पे क्या होता है, पेन भी काफी होता है। तो हर कोई इंसान, मैं देखता हूँ कि लेग्स से एक्सरसाइज होती है उससे दूर भाग, लेकिन लेग का वर्कआउट सबसे अच्छा करना चाहिए आपको, क्योंकि लेग वर्कआउट करने से आपकी ऑल ओवर बॉडी ज्यादा अच्छी होती है, कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जब मेन ग्रुप की बात करते हैं, तो उनका क्या होता है, जब भी अपने लेग्स लगाते हैं तो उनका हार्मोन ज्यादा बिल्डअप होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पावरफुल बनता है, और टेस्टोस्टेरोन जितना अपना अच्छा रहता है मेंस की अगर मैं बात करूं, तो आपकी बॉडी उतना ही जल्दी आपका मसल मास रिकवर करेगी और आपका फैट ड्रॉप करेगी।
1: एक मिसकंसेप्शन जो है जनरली देखा जाता है कि महिलाओं को जिम करने की क्या जरूरत है?
0: देखिए सर, आप एक जेंट्स हो या फीमेल हो, दोनों को ही जरूरत पड़ती है, दोनों के शरीर में मसल्स है, दोनों के शरीर में जॉइंट्स है, सबको एक मसल्स को बिल्डअप करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करनी है। लोग कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि योगा कर लो, योगा करने से आप फिट रहोगे।
1: योगा भी अच्छा है अपनी जगह, लेकिन अगर अपने को मसल्स को बिल्ड करना है
0: जी,
1: तो हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सर, मैं योगा के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि योगा खराब है, लेकिन योगा से आप अपने पाचन क्रिया या इनर जो ऑर्गन है आपके वो अच्छे रख सकते हो, लेकिन अगर आपको मसल बिल्डिंग ही करनी है, आपको बॉडी फिटनेस रखनी है, अपन मसल मास को बिल्डअप करना है, फैट को ड्रॉप करना है, तो आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे आप अपने जो एक फिटनेस लेवल को आप अचीव कर पाए। और महिलाओं के लिए भी यही है कि आप अपने रेगुलर रूटीन में 1 घंटा आप अपना जिम में ज्वाइन कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, आसपास जिम नहीं है या घर से कोई परमिशन नहीं है, तो आप घर में भी अपना वर्कआउट कीजिए।
1: एक जो फिटनेस का बहुत बड़ा पहलू है, उस पर हम बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे, जो डाइट है। डाइट में मुख्य रूप से आप हमें ये बता दीजिए कि जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको अपने डाइट में कौन कौन सी चीजें जो है वो ऐड करनी।
0: अगर कोई एग्स खा सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई एग खा सकता है, कोई चिकन खा सकता है, तो दिन के अंदर सिर्फ 5 से 8 अंडे अपने जो रेगुलर रूटीन में आप कह सकते हैं, पूरे दिन के अंदर 5 से 7 अंडे आप ऐड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि 8 के 8 अंडे आपको एक टाइम ही खाने, वो 2 से 4 करके आप कभी भी खा सकते हो, ठीक है, जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, ठीक है। पनीर भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे और घर का बना खाना, दाल चावल, ये बहुत ही अच्छा है, राजमा चावल हो गए, ठीक है, इनमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है, सोयाबीन बड़ी होगी जो बहुत ही सस्ती मिल जाती है और काफी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, प्रोटीन के लिए काफी लाभदायक भी है, ठीक है। तो आप घर पे भी बना खाना आप आराम से खाइए, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप, लेकिन आप ये देखिए, काफी लोग क्या करते हैं कि सर हम घर का बना खाते हैं लेकिन हम फिट नहीं रह पा रहे, हमारा वेट बढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, घर का बना खाना इतना ज्यादा खाते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती।
1: जी जी, सही बात कही आपने कि जो एग्स हैं या फिर चिकन है या फिर किसी भी तरह का नॉन वेज आहार जो आपने बताया, वो अपनी डाइट में हम जो है वो अगर सम्मिलित करते हैं तो प्रोटीन जो है उससे अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। ऐसे लोग हमारे आसपास आपको ज्यादा मिलेंगे जो प्योर वेजिटेरियन है, उनके लिए आप कुछ ऑप्शंस और बताइए कि वो प्रोटीन का इंटेक कैसे बढ़ाएं।
0: जैसे एक सोया पनीर आती है, सोया पनीर वो खा सकते हैं, और राजमा चावल खा सकते हैं। आप देखिए जो आजकल सत्तू पाउडर का काफी चलन है, जो अपने जो काले चने होते हैं उनको पीस कर ही बनाया जाता है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं। दाल चावल खा सकते हैं, सोयाबीन बड़ी अपने को मार्केट में आराम से मिल जाती है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं।
1: वे प्रोटीन,
0: और देखिए सर, अगर आप इन डाइट्स को प्रॉपर अगर मेजर नहीं रख पाते, ठीक है, तो आप एक प्रोटीन का जो डिब्बा होता है, लोग इसको काफी मिसकंसेप्शन है कि भाई डिब्बा खा के बॉडी बनाई, ऐसा कुछ नहीं होता, वो चीजें सिर्फ दूध से ही बनी होती है। बस ध्यान ये रखना होता है कि आपको जो भी आप जहाँ से भी चीज परचेज कर रहे हो वो ओरिजिनल हो, ताकि आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो उस चीज का, वो आप ऐड कर सकते हो। एक स्कूप प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद में जरूर ऐड कीजिए, ताकि आपने जो भी वर्कआउट किया है उसकी रिकवरी के जो मोड है वो अच्छा हो जाए पहले से।
1: जी, हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आमिर खान की जो बातें हैं उनको सुनकर उनकी लाइफ में मोटिवेशन आए, वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज को चाहे वो घर पर करें या फिर जिम जाकर करें, और अपनी डाइट को जो संतुलित करें, अपने हेल्थ को, अपनी फिटनेस को अच्छा बनाएं और एक अच्छे जीवन को जो है जीने की ओर अग्रसर हूं। आमिर खान, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत, यह आकाशवाणी केंद्र सूरतगढ़ का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं फिल्म नूरी के इस गीत के साथ, जिसके बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर ने, संगीत है खयाम का और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। शर्मिली फिल्म से ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसके बोल लिखे हैं नीरज ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं जीवन मृत्यु फिल्म से ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म कारवां से ये गीत। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार है आर डी बर्मन और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, कारवां फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद

0: में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों

0: समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs.